अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

श्री राम लला भगवान की, श्री आनंदकंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रानंदन भगवान की, श्री चारो भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की, प्रातः श्रृंगार आरती की, जय जय श्री सीताराम।

विप्रधेनु सुरसंतहिता लेन मनुजयवतार निजेच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय। श्री अयोध्या राम जी लला की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री रमापति रामचंद्र की जय। श्री वृंदावन कृष्ण वल्लभ जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री सीता राम।

विश्वे देवा सदा सदा इति ओम विश्ववात चक्षुरु तद्विश्ववात मुखो विश्ववात बाहुरु तद्विश्ववात स्था।

कार्यशीलाद्यनवधिक अतिशया संघकल्याणगुणगणाम् अप्रमेयकृपारत्नाकरम् भगवन्तम्।

वर्जनम भो बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम सर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम श्री सीताराम नाम महाराज की। संत बड़े परमारथी भेष भरे यमदूत राम नाम की गर्जना भाग जाए यमदूत श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम लला भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हरा।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

ओम श्रोताओं, सिर्फ एक शब्द नहीं है ओम, ये तो वो आधी ध्वनि है जो इस सृष्टि के कण कण में रचि बसी है। माना जाता है कि जब ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था तो जो पहली गूंज उठी थी वो यही ओम थी। ये हमारी धरती की पहली आवाज़ है, रूह का संगीत है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम खुद को उस विराट ऊर्जा से जोड़ लेते हैं जहाँ से सब कुछ शुरू होता है और जहाँ सब कुछ विलीन हो जाता है। ये शोर के बीच का वो मौन है जो हमें खुद से मिलाता है, इसलिए हम हर दिन की शुरुआत इसी अनंत गूंज के साथ करते हैं। श्रोताओ, आइए यजुर्वेद के 33 संहिता का हिस्सा श्री रुद्रम नमकम पेश करते हैं।

आप हमारा ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालतल स्टूडियो से 103.7 MHz पर, और साथ साथ आप हमें सुन रहे हैं FM पहलगांव 100.1 MHz पर। मैं हूं आपका उद्घोषक आमिर, और फिर से एक और सभा लेकर हम जुड़ रहे हैं। हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है जहां हम भारत की प्राचीन वैदिक परंपरा का एक हिस्सा अमूल्य अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, जो हजारों वर्षों से श्रद्धा, अध्यात्म और मानव कल्याण का संदेश

0: देता आ रहा है। श्रोताओं, बहुत से लोग इन दोनों नामों को सुनते ही भगवान शिव का नमन करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नमक्कम और चमक्कम की। कई लोगों ने रुद्र अभिषेक के दौरान इनका पाठ सुना होगा, लेकिन सवाल ये है कि नमक्कम और चमक्कम असल में है क्या, इनका वेदों में क्या स्थान है, इनकी रचना किस उद्देश्य से हुई, और आखिर ऐसी क्या है इन मंत्रों में कि आज भी हजारों सालों के बाद इनका उच्चारण उतना ही श्रद्धा और मर्यादा के साथ किया जाता है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हमें चार वेदों का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समावेदा और अथर्ववेदा। इनमें से हर एक वेद का अपना अलग स्वरूप, उद्देश्य और महत्व है। ऋग्वेदा को प्रार्थनाओं और सूक्तों का वेद माना जाता है। समावेदा गीत और संगीत में उच्चारण का वेद है। अथर्ववेदा में जीवन के व्यवहारिक और दार्शनिक पहलुओं का विस्तार मिलता है। और यजुर्वेदा यज्ञ और वेदिक कर्मांड से जुड़ा हुआ वेद माना जाता है। इसी यजुर्वेदा का एक महत्वपूर्ण भाग, इसी में हमें मिलता है श्री रुद्रम, जिसे वैदिक परंपरा की सबसे महान स्तुतियों में से एक माना गया है। श्री रुद्रम दो भागों में विभाजित है, पहला भाग है नमक्कम और दूसरा भाग है चमक्कम। ये दोनों मिलकर एक संपूर्ण वैदिक रचना का निर्माण करते हैं। अब सवाल उठता है कि इनके नाम नमक्कम और चमक्कम क्यों पड़े। इसका जवाब भी बहुत रोचक है। नमक्कम में जो बार बार एक शब्द आता है नमः, संस्कृत में नमः का अर्थ होता है नमः करना, प्रणाम करना, विनम्रता के साथ वंदना करना। इसी नमः की ये जो शब्द है, इसकी बारंबार उपास्थिति के कारण इस बाग को नमक्कम कहा गया। दूसरी ओर चमक्कम में बार बार एक और शब्द सुनाई देता है चा मे। संस्कृत में चा का अर्थ है और, जबकि मे का अर्थ है मुझे, यानी चा मे का भाव है और मुझे भी प्राप्त हो। इसी कारण इस बाग को चमक्कम कहा गया। लेकिन यहाँ एक और बात समझना बहुत जरूरी है। चमक्कम को सिर्फ भौतिक वास्तुओं की मांग समझना बिल्कुल सही नहीं होगा। इसमें धन या समाप्ति के साथ साथ ज्ञान, विवेक, सत्य, आरोग्य, शक्ति, संतुलन और अंततः आध्यात्मिक उन्नति की भी प्रार्थना की गई है। यही वजह है कि नमक्कम और चमक्कम को अलग अलग देखना उचित नहीं माना जाता। एक तरफ नमक्कम में भक्त पूरी विनम्रता के साथ ईश्वर को प्रणाम करता है और दूसरी तरफ चमक्कम में वही भक्त ईश्वर की कृपा से जीवन के लिए आवश्यक गुणों और वरदानों की प्रार्थना करता है। यानी पहले समर्पण, फिर प्रार्थना, पहले विनम्रता, फिर वर की कामना, फिर वर की कामना, यही श्री रुद्रम का आध्यात्मिक संतुलन है। जी हाँ, आज बात करेंगे नमक्कम के बारे में कि इसका महत्व क्या है, और उसके बाद चमक्कम के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं हमारे संवाददाता जावेद मेहराब से, जो हमारा मुख्य दौर है भगवती नगर बेस कैंप से, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, आपका स्वागत करते हैं आज की इस यात्रा में, और बताइए सबसे पहले कि आज जो काफिला घाटी की ओर रवाना कर दिया गया, जो रवा दवा है 8150 भक्त, जो 334 वाहनों में घाटी की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी क्या तफसीलात हैं आपके पास, हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए।
1: जी, हमारी कोशिश होती है कि रोज हम तीर्थयात्री जो यहाँ लगातार जम्मू में पहुंच रहे हैं, किस तरह का माहौल है, क्या क्या किस तरह से तीर्थयात्री यात्रा के लिए निकलते हैं, क्या तैयारियां होती है, और इन सब की जानकारी को इकट्ठा करके हम कोशिश करते हैं कि हम अपने श्रोताओं के साथ उसको साझा कर सकें। तो आज की जो जानकारी है उसमें मैं बताऊं आपको कि श्री अमरनाथ यात्रा आगे बढ़ने के साथ पूरा जम्मू शहर जो है माफ कीजिएगा, शिव भक्ति के रंग में सराबोर है। देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालुओं की चहल पहल से माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है। तवी रिवर फ्रंट

बदीनगर यात्री निवास, राम मंदिर और अन्य पंजीकरण केंद्रों पर सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तभी रिवर फ्रंट पर दिन रात श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी है। सुबह तड़के ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु टोकन पंजीकरण के लिए कतारों में लग जाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए पूरे धैर्य के साथ अपनी जो बारी का इंतजार करते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि काफी देर से प्रशासन जो है वो बराबर श्रद्धालुओं की कोई अपील भी कर रही है कि धैर्य का आपको परिचय देना होगा और इंतजार अपनी बारी का करना होगा, तो उसका वो परिचय भी दे रहे हैं। भगवती नगर यात्री निवास पर भी श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार जारी है। विभिन्न राज्यों से बसें श्रद्धालुओं को लेकर लगातार यहाँ पहुंच भी रही हैं। हालांकि कुछ देर तक जो ये आवाजाही जो बाहरी राज्यों से यहाँ मुख्य द्वार लखनपुर से यहाँ पहुंच रहे थे, उन्हें विजयपुर, सांबा, कठुआ, लखनपुर के ट्रांजिट कैंप्स में रखकर फिर वापस जम्मू ले बुलाया गया, तो वहां से भी रवाना हुई बसें। तो एक अनुशासित तरीके से जो है यात्रा का जो भ्रमण है चल रहा है। विभिन्न राज्यों से जो है लगातार श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी सतर्कता के साथ जांच प्रक्रिया में जुटी है। वही यहाँ जम्मू में डोगरा चौक, रघुनाथ बाजार, पुराने शहर के बाजारों में भी श्री अमरनाथ जी यात्रा के तीर्थ यात्रियों की आवाजाही बनी है। श्रद्धालु खरीदारी करने के साथ साथ शहर के प्रमुख मंदिरों में भी हाजिरी देते नजर आ रहे हैं। वहीं जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी बुधवार को अमरनाथ यात्रियों के लिए बनाए गए विशेष पंडाल में श्रद्धालु आराम करते भी देखे जा सकते थे। यहाँ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु ठहरे हैं। शदीद गर्मी और उमस से थकावट के बावजूद बाबा बर्फानी के दर्शन की आस में इन शिव भक्तों का उत्साह हर हर महादेव के जयघोष को देखते ही बनता है। क्योंकि यहाँ मैं बताऊं आपको कि जिस तरह से बाहरी राज्यों से जब मुख्य द्वार से जम्मू कश्मीर लखनपुर की तरफ आ रहे थे श्रद्धालु, तो वहां भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगहों पर विभिन्न पंडाल और विभिन्न जो ट्रांजिट कैंप्स बनाए गए हैं वहां यात्रियों को ठहराया जा रहा है, वहां खाने पीने की व्यवस्था है। उसी तरह से यहाँ रेलवे स्टेशन पर भी एक बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है ताकि तीर्थ यात्रियों को एक ही जगह एकत्रित ना किया जाए, उससे कंफ्यूजन, क्योस, मिसकम्युनिकेशन बढ़ जाता है। इसीलिए अलग अलग जगहों पर तीर्थ यात्रियों को अपनी पूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही फिर बेस कैंप बुलाया जाता है। तो एक अलग तरह का माहौल, एक उत्साह का माहौल और चारों तरफ श्रद्धालुओं की आवाजाही, जो मैं कह रहा था शहर के विभिन्न हिस्सों में और बीचों बीच शहर में भी जो खरीदारी देखने को मिल रही है, जो अलग अलग तरह से श्रद्धालु यहाँ के जनजीवन में अपना हिस्सा भी ले रहे हैं और यहाँ के जो कल्चर, यहाँ का जो जो सिस्टम है उसमें अपने आप को ढाल रहे हैं, उसी को लेकर मैंने कहा कि जो शहर है वो पूरी तरह से श्रद्धालुओं की वजह से और इस यात्रा की जो ताकत है उसकी वजह से सराबोर है पूरी तरह से ये शहर। तो वही तीर्थ यात्रियों यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को प्रशासन जम्मू के धार्मिक और विरासत से भी रूबरू करा रही है। आज वीरवार से शुरू होने जा रही है राही बस सेवा। उसका जो बुधवार को ट्रायल भी हुआ, कल उसका ट्रायल भी हुआ जिसमें 5 बसें शामिल थी। ट्रायल के दौरान बसों में श्रद्धालुओं को मुफ्त जम्मू दर्शन कराए गए। राही स्कीम की बसों में तीर्थ यात्रियों ने चिनाब लेन, तीरथ लेन, सरहद लेन और फन लेन का भ्रमण किया। ये अलग अलग लेन का मतलब ये है कि अलग अलग जगहों पर आपको ले जाया जाता है। जैसे चिनाब लेन का मतलब है कि आपको जम्मू के बॉर्डर सरहद दिखाई जाती है। उसके अलावा जो तीर्थ लेन है उसमें जम्मू के मंदिर आपको दिखाए जाते हैं। यहाँ बालाजी तिरुपति, श्री बालाजी तिरुपति का बहुत बड़ा मंदिर है, कल तीर्थ यात्रियों को वहां भी ले जाया गया। तो अलग अलग जगह से अलग अलग तरह से जो श्रद्धालु हैं उन्हें जम्मू के इस कल्चर, इस जो यहाँ की धार्मिक विरासत है उसका भ्रमण भी कराया जाता है। इस बस सेवा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सीटें बुकिंग की सुविधा भी है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर राकेश मन्हास ने बताया है कि बस सेवा

0: का उद्देश्य जम्मू की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के अलावा श्रद्धालुओं को भी रूबरू कराना है। बस में टूर गाइड भी लगाए गए हैं जो हर पर्यटकों को, यात्रियों को स्थान की ऐतिहासिक और विशेषता के बारे में बताते हैं। ये बस तवी रिवर फ्रंट और अमरनाथ यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। सुबह 9 बजे ये बस सेवा शुरू होगी। बस अपने निर्धारित रूट पर यात्रियों को ले जाएगी और वापसी शाम 5 बजे करेगी। श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने इस बीच खाने पीने की व्यवस्था भी रखी है। तो एक तरह का जहाँ स्थानीय लोग, निजी संस्थाएं, वही प्रशासन भी हर दिन एक कोई नई कोशिश करके श्रद्धालुओं को अपनी तरफ भी खींचती है और वहीं शहर में उन्हें एक अलग अलग यहाँ की कल्चर, यहाँ की जबान, यहाँ के खाने पीने से भी रूबरू करा रही है। वहीं इस दौरान तवी रिवर फ्रंट पर बुधवार देर रात को महाआरती पूजन का भी सम्मेलन हुआ। हालांकि आरती शुरू होते ही बारिश भी शुरू हुई, लेकिन श्रद्धालु आरती में जुटे रहे और तवी रिवर फ्रंट पर चारों तरफ बाबा बर्फानी के जयघोष गूंजने लगे। हालांकि साउंड सिस्टम भी कुछ देर के लिए बंद हो गया, लेकिन आरती बनी रही। आयोजित की गई ये आरती, महाआरती एक बार फिर ये संदेश दे रही थी कि आस्था के आगे मौसम, सिस्टम और दूसरा सब छोटे पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल, बेशक, बेशक।
0: अलग तरह का एक माहौल जम्मू शहर में बना हुआ है। और इसी दौरान आज जो मैं, आज वीरवार है और श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा बराबर बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का जो तांता लगा हुआ है वो बराबर जारी है। आज भी जैसा आपने बताया कि 8150 तीर्थ यात्री जो है पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रवाना कर दिए गए हैं, जिसमें बालटाल मार्ग से 3445, वहीं प्राचीन पहलगाम मार्ग से 4705, वहीं इस दौरान तीर्थ यात्रा में शामिल पुरुषों की संख्या जो है वो 5663 है, महिलाओं की संख्या 1960 है, बच्चे 15 है, साधु 432 है, साधवी 77 है और ट्रांसजेंडर 3 है। तो इसका मतलब समाज का हर हिस्सा, जैसे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जवान, सब लोग इस श्रद्धा की इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं और शहर में भी उसी तरह का माहौल है। तो एक बहुत भक्तिमय माहौल शहर में बना हुआ है। जी
1: जावेद, अच्छी बात है। अच्छा, हमें बताइएगा कि जो क्योस और कंफ्यूजन पाया जाता है भक्तों में जब वो आते हैं RFID काउंटर्स पे जाते हैं, तो ऐसे में हमारे श्रोताओं को ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन हो सकती है, क्या इस बारे में आपके पास कोई तफसीलात हैं?
0: देखिए, रजिस्ट्रेशन तो तीन चार जगह जो मुख्य रूप से बताई गई हैं, जैसे तवी रिवर फ्रंट है
1: जी,
0: उसके अलावा खुद जो है यात्री निवास जो है, उसके अलावा राम मंदिर है, साधुओं के लिए अलग रखी गई है
1: जी,
0: साधु साधवीज के लिए अलग रजिस्ट्रेशन सेंटर्स है जो शहर के अंदर ही है। राम मंदिर और पुरानी मंडी का एक बड़ा मंदिर है, वहां पर श्री राम मंदिर, वहां ये सुविधा रखी गई है। बाकी पर्यटकों को अलग रखा गया है। तवी रिवर फ्रंट है, रेलवे स्टेशन है, ये मुख्य रूप से रखे गए हैं, क्योंकि तवी रिवर फ्रंट का एरिया बहुत बड़ा है। यहाँ बसें लग रही हैं, यहाँ गाड़ियां लग रही हैं, यहाँ व्यवस्थाएं रखी गई है, खेमे लगे हुए हैं, तो मुख्य रूप से इसलिए इसको बाहर ही रखा गया। पहले शहर के अंदर होता था, ये पिछले 2-3 सालों से शहर के अंदर ही ये सारे रजिस्ट्रेशन सेंटर होते थे। जैसे ही रेलवे स्टेशन से या गाड़ियों के माध्यम से लोग यहाँ पहुंचते थे तो रेलवे स्टेशन के आसपास ये सारी सुविधाएं होती थी, लेकिन उसकी वजह से क्या होता था कि जो यहाँ लोकल लोग हैं उनके लिए सड़कें बंद हो जाती थी, ट्रैफिक जैम लग जाते थे, बहुत सी और परेशानियां शहर के अंदर पड़ जाती थी। लेकिन उसी को मैनेज करने के लिए इस बार तवी रिवर फ्रंट का एक बहुत बड़ा एरिया जो पिछले लगभग कोई 5 से 6 साल से लगातार बन रहा था, उसका बड़ा एरिया लिया गया, वहां पूरी तरह से उसको सील किया गया। सुरक्षा के लिहाज से भी वो शहर के बीचों बीच भी है और शहर से अलग भी है, उससे किसी तरह का जाम, किसी तरह की परेशानी स्थानीय लोगों को भी नहीं मिलती है। तो मुख्य रूप से एक तो तवी रिवर फ्रंट का जो एरिया है जहां रजिस्ट्रेशन होती है, उसके अलावा रेलवे स्टेशन, रेल के माध्यम से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए वही रखा गया है ताकि वो रजिस्ट्रेशन वही हो जाए, क्योंकि जो लोग विदाउट रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं उन्हें पहले रोका भी जा रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि गाड़ियों के माध्यम से जो लोग लखनपुर से यहाँ इस

0: पहुंच रहे हैं, उनके लिए विजयपुर, सांबा, कठुआ, इन जगहों पर अलग अलग ट्रांजिट कैंप्स भी रखे गए हैं और उनकी वहां जांच भी होती है ताकि जो लोग विदाउट रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन मौके पर की जाए और उसके बाद उन्हें आगे भेजा जाए। क्योंकि 9
1: जी
0: तारीख तक टोकन बंद थे, आज 9 तारीख से शुरू हो गए हैं, तो इसीलिए बार बार जो सरकार कह रही है जैसे ही साइट खुलेगी, साइट पर, और मुख्य रूप से साइट पर कहा गया है लोगों को कि आप SASB जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की साइट है उस पर जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए। और प्रशासन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो ऑनलाइन कोशिश करें, क्योंकि आज से तो खुल गया, तो
1: जी
0: ऑनलाइन कोशिश करें रजिस्ट्रेशन, और रजिस्टर करके ही आए। उससे फायदा ये होता है कि जल्द आपको मौका मिलता है यात्रा में हिस्सा लेने का। जब आप
1: जी जी जी सही बात है जावेद, जब हम पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके होते हों तो ऐसे में जो भीड़ है, भीड़ भड़काव कम होता है और ऐसे में क्योस और कन्फ्यूजन पैदा नहीं होता है और
0: तो
1: प्रशासन
0: सारी
1: पे
0: चीजें,
1: दबाव भी नहीं
0: क्योंकि
1: बढ़ता है। आप
0: हाँ
1: सही सही कह रहे हैं
0: एग्जैक्टली
1: आप,
0: क्योंकि देखिए ये छोटी यात्रा नहीं है,
1: बिल्कुल
0: लगातार पिछले एक हफ्ते से लगभग 1.5 लाख के करीब अब ये होने लगा है, 1 लाख को क्रॉस कर गया, 1.25 लाख को, तो परसों को क्रॉस कर गया ये आंकड़ा दर्शन का। तो लगातार प्रशासन की भी कोशिश है, कल सबसे ज्यादा तीर्थयात्री गए 9,000 के, 9,000 से ज्यादा, और
1: जी
0: आज 8,000 से ज्यादा, परसों भी मतलब ये लगातार ये चल रहा है, और यात्रा पिछले 6 दिनों में लगभग 1.25 लाख को पार कर गई है जो दर्शन करके वापस भी लौटे हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए भी
1: वो
0: है,
1: बहुत बड़ा नंबर
0: लगातार
1: है।
0: लोग
1: बिल्कुल
0: पहुंच भी रहे
1: बिल्कुल
0: हैं, लगातार लोग पहुंच भी रहे हैं, और ये यात्रा सिर्फ दर्शन कराना ही नहीं है,
1: सही
0: उनके
1: बात,
0: खाने पीने की, उनके रहने की व्यवस्था, उनके पूजा आरती की व्यवस्था, उनके हर चीज की व्यवस्था, उनको एक एक चीज दिखाने की, जैसे मैं हर दिन रिपोर्ट में कहता हूँ कि जहाँ समीक्षाएं होती है, एडमिनिस्ट्रेशन समीक्षाएं करती है किस तरह से तीर्थ यात्रा को एक बेहतर रूप से, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, लगातार लोग आ भी रहे हैं, किसी को रोका नहीं जा सकता है, जो बिना पंजीकरण के भी आते हैं वो भी आ रहे हैं, जो विद पंजीकरण आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा आसान भी हो रहा है, लेकिन लगातार लोग आ रहे हैं, और उसका प्रश्न शहर पर भी है और जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है उस पर भी है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन, जब लोग ज्यादा होते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ता है, लेकिन उस लेवल का नहीं है कि ह्यू एंड क्राई है। कुछ चीजें, कुछ सुविधाएं जब एक आम आदमी को नहीं मिलती है उसको नेचुरली लगता है कि कम है सुविधाएं,
1: जी सही
0: लेकिन
1: बात है बिल्कुल
0: जब वो ओवरऑल देखे तो एक बहुत बड़ा इंतजाम है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हर दिन का एक बड़ा चैलेंज है, तो
1: बहुत बड़ा चैलेंज
0: इसको
1: है, सही
0: एक
1: बात है
0: मुख्य
1: बिल्कुल।
0: रूप से सबने मिलकर ही चलाना है, उसमें निजी संस्थाएं भी है, प्रशासन भी है, स्थानीय लोग भी हैं, और सभी मिलकर ही इस तीर्थ यात्रा को आगे, लगभग 57 दिन की यात्रा है, तो लगातार इसको तभी चला सकते हैं जब मिलकर ये सब काम करें।
1: जी बिल्कुल सही बात है, जब तक वक्तों का तावन न हो तब तक इस यात्रा को कियोस और कन्फ्यूजन के बगैर जो है चलाना नामुमकिन है। सही बात है बिल्कुल। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस विस्तृत जानकारी के लिए।
0: बहुत शुक्रिया।
1: जम्मू से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब हमसे जुड़े थे और इन्होंने तफसील बताया कि रजिस्ट्रेशन RFID काउंटर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, जहाँ आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि जो हमारा मुख्य द्वार पड़ता है भगवती नगर बेस कैंप, वहाँ आप कोशिश करें कि आपका जो सारा प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाए, ताकि जब आपको घाटी की और विभिन्न मार्गों से आगे बढ़ने की अनुमति मिली तब आपको ये परेशानी ना सताए कि हमें अभी रजिस्ट्रेशन करना बाकी है और बाकी प्रोसेस जब आपको करना पड़ता है बालतल बेस कैंप या पहलगाम बेस कैंप में, तो कियास और कन्फ्यूजन तो पैदा होता ही है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर राष्ट्रीय राजमार्ग से मोहम्मद तस्कीन जुड़े हुए हैं। जी तस्कीन, बताइए जो सुबह काफिला जो जत्था घाटी की ओर रवाना कर दिया गया उसकी क्या तफसीलात आपके पास है, कहाँ पहुँचा है वो जत्था और जो संख्या है 8,150 वो कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ वो कयाम करेंगे? जी
2: जी शुक्रिया। दोनों जो काफले हैं श्री अमरनाथ यात्रा के, जो बालतल और पहलगाम के रास्ते पवित्र गुफा की तरफ जाने वाले हैं, आज 9वें बेज में, 8वें बेज में, तो वो अभी रामबन डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं। दोनों काफले आगे बढ़ रहे हैं, एक काफला अभी कुछ वक्त के बाद बारहाल पहुंचने वाला है, जहां पर इनका ये ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह के अवकात में होता है, तो उसके बाद उन्हें यहाँ से रवाना किया जाएगा। इसी तरह जो पहलगाम का जो काफला है तो वो

0: वो काफिला 8,150 घाटी की ओर रवा दवा है, उनको कैसे फिर अकोमोडेट किया जाता है, वो सारा प्रोसेस किस तरह होता है, इसका मुशाहिदा खुद हमारे साथी अस्तारिक कर रहे हैं। अस्तारिक बताइए, क्या कुछ हो रहा है आपके नुनमन बेस कैंप में?
1: हाँ जी जुबैर, सबसे पहले प्रिय श्रोताओं को मेरा सुप्रभात। भगवान शिव के भक्तों की आध्यात्मिक यात्रा आस्था सफलता और स्वच्छता के साथ बिल्कुल निरंतर जारी है। सुहाने मौसम के बीच आज सुबह 4 बजे निर्मल आधार शिविर और निजी अवसरों से 10,000 से अधिक यात्रियों पर मुश्तमिल जत्था चंदनवारी के ओर रवाना हो चुका है, जहां से पंचकर्म के बाद ये श्रद्धालु पवित्र गुफा के अगले पड़ाव शेषनाग और पंचतरणी के ओर अपनी पदयात्रा जारी रखेंगे। दोपहर के बाद यात्री इन्हीं पड़ावों पर रात्रि विश्राम करेंगे और अगले सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो इधर शो शेषनाग और पंचतरणी में पहले से मौजूद श्रद्धालु आज पवित्र गुफा के ओर रवाना हो चुके हैं। श्रद्धालु जो आपके ज्ञान में होगा कि इस वर्ष पवित्र गुफा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा दस्तियाब नहीं रखी गई है, इसलिए घोड़ेबान और पालकी वाले यात्रियों की सहूलियत के लिए पूरी तरह कमर बस्ता है। इधर जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 334 छोटी बड़ी गाड़ियों में 8,150 यात्रियों पर मुश्तमिल 8वां जत्था नवयुग टनल पार करके काजीकुंड ट्रांजिट कैंप पहुंचने वाला है। ये जत्था दोपहर के करीब ट्रांजिट कैंप काजीकुंड पहुंचेगा, जहाँ से बालतल और पहलगाम के लिए अलग अलग जत्थे रवाना किए जाएंगे। इनमें पहलगाम के प्राचीन मार्ग के लिए 166 छोटी बड़ी वाहनों में 4,705 यात्रियों पर मुश्तमिल जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी के प्राचीन मार्ग पहलगाम के ओर रवाना होगा। इनमें 3,293 पुरुष, 1,115 महिलाएं, 238 साधु, 57 साध्वी और 2 बालक शामिल है। ये यात्री दोपहर तक पहलगाम पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम नुनमन बेस कैंप में करेंगे। श्रोताओं, मैं आपको ये भी विवरण देता चलूं कि मौसूल आंकड़ों के अनुसार कल शाम तक 1,42,000 से अधिक भक्तों को बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। साल 2026 की ये वार्षिक यात्रा 3 जुलाई की आधिकारिक रूप से शुरू हुई थी। इब्तदाई आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष यात्रियों की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले में लगभग 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रशासन के ओर से नुनमन बेस कैंप में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रखी गई है। हर कैंप यात्रा मार्ग पर यात्रियों के लिए चिकित्सा सेवाओं के लिए हर पड़ाव पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और चिकित्सक मौजूद है।
0: इस तारीख हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगता है इस तारीख से हमारा जो संपर्क है वो टूट चुका है। जी हाँ, हमारा जो राबिता है वो टूट चुका है। और फिलहाल आपको बता दें कि इस तारीख ने एक अच्छी बात कही कि 1,42,000 भक्तों ने अभी तक बाबा भोले के दर्शन किए हैं। और हम बात कर रहे थे श्री रुद्रम की, जिसमें हम बात कर रहे हैं नमक्कम की। श्री रुद्रम कृष्ण यजुर्वेदा के तैतृत्र संहिता का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका उल्लेख तैतृत्र संहिता के चतुर्थ कांड में मिलता है। वैदिक विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि नमक्कम और चमक्कम दोनों प्राचीन वैदिक मंत्र संग्रह का हिस्सा हैं, और इनका जो पाठ है अनेक शताब्दी से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सुरक्षित रूप से चल रहा है। वेदों की एक विशेषता ये भी रही है कि इनका जो संरक्षण केवल लिखित रूप से ही नहीं है, बल्कि मौखिक परंपरा के माध्यम से हुआ है। हर स्वर, हर मंत्र और हर उच्चारण की अपनी एक निश्चिंत पढ़ता है। इसलिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण करते समय स्वर की शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। जी हाँ, वैदिक परंपरा में माना जाता है कि मंत्र के शब्द के साथ साथ उसका उच्चारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण नमक्कम और चमक्कम का जो पाठ है, प्रशिक्षित वेदाप्ति या वैदिक उच्चारण में निपुण विद्वानों द्वारा किया जाना परंपरा का हिस्सा रहा है। आज भी भारत के अनेक शिव मंदिरों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक अनुष्ठानों में श्री रुद्रम का पाठ उस

0: प्राचीन स्वर पद्धति के अनुसार किया जाता है। लेकिन नमक्कम और चमक्कम की सबसे बड़ी विशेषता शायद यही है कि इनमें भगवान शिव को किसी एक सीमित रूप में नहीं देखा गया। यहाँ रुद्र के रूप में वो प्रकृति में भी हैं, पहाड़ों में भी हैं, नदियों में भी हैं, वनों में भी हैं, पशुओं में भी और समाज के हर वर्ग के बीच भी। ये दृष्टिकोण वैदिक दर्शन की उस विशाल सोच को दर्शाता है जहाँ ईश्वर को केवल मंदिर तक सीमित नहीं किया गया बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्यापक माना गया। जी हाँ, ये तो थी बात नमक्कम के बारे में। अब हम बात करना चाहेंगे हमारे जो गांदरबल बालतल से रहीम रिजवान हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे हम राबिता जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो बालतल बेस कैंप में क्या कुछ हो रहा है वो रहीम रिजवान से जानेंगे। पहले हम नमक्कम का कुछ हिस्सा आप तक पहुंचाते हैं।
1: पारे

0: नमकम का अगला हिस्सा आप तक पहुंचाएंगे। हमने कहा था कि हम रहीम रिजवान, जो हमारे बालतल के नुमाइंदे हैं, बालतल के संवाददाता हैं, उनसे हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो रहा है। फिलहाल हम रुख करते हैं श्रीनगर का, जहां से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं इमरान नायको। इमरान, बताइए, जो हमारा एकमात्र बेस कैंप है श्रीनगर में, वहाँ की क्या स्थिति बनी हुई है?
1: शुक्रिया आमिर। देखिए, बिल्कुल श्रीनगर के इस पांथरचौक ट्रांजिट कैंप से अमरनाथ जी यात्रियों की पहले दिन से ही जो आमद है वो जारी है, और यहाँ से अमरनाथ जी यात्रियों को पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जा रहा है। और आज भी हम देख रहे हैं कि यहाँ से अमरनाथ जी यात्रियों को पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया, और कल शाम को यहाँ पे दो जत्थे जो है ट्रांजिट कैंप पहुंचे, जिन्होंने यहाँ पे नाइट स्टे किया, और इसमें मर्द, खवातीन और साधु साध्वी भी शामिल थे, और कुछ बच्चे भी इसमें मौजूद थे। और ओवरऑल यात्रियों की जो श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में पहुंचना और उसके बाद यहाँ से उन्हें पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना करना, ये पहले दिन से ही जारी है। और इस सिलसिले में यहाँ अमरनाथ जी के जो श्रद्धालु है वो उनके लिए हर तरह की यहाँ सुविधाएं सरकार की तरफ से रखी गई है। और मुसलसल हम देख रहे हैं कि जैसे कल भी हमने देखा कि ऑफिशियल्स की तरफ से यहाँ विजिट किया गया और अमरनाथ जी यात्रियों के साथ उनकी बात हुई है, और ओवरऑल यात्रा की अरेंजमेंट्स को लेके यात्रियों से फीडबैक लिया जा रहा है, और या उन्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो उस पर भी उनसे जो है फीडबैक लिया जा रहा है। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि वो तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो है कंसर्न, वो तो अमरनाथ जी यात्रियों के साथ मुख्तलिफ जगहों पर मुलाकात कर रहे हैं, विजिट्स कर रहे हैं। इन द मीन टाइम हम देख रहे हैं कि इस ट्रांजिट कैंप में हर तकरीबन सभी जो सिविल डिपार्टमेंट्स या सिविल लाइन्स के जो महकमे हैं वो यहाँ पर उनके जो अहलकार हैं वो तैनात हैं। ट्रैफिक पुलिस हो या बाकी सिक्योरिटी इदारों के जो अहलकार है वो तैनात है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम पहले दिन से कह रहे हैं कि यहाँ वो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं, और ताकि इस यात्रा को पूर्ण तरीके से यात्रियों की हिफाजत को इंश्योर किया जाए। इसके अलावा चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, वो चाहे जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, या जितने भी दीगर महकमे हैं उनके अहलकार यहाँ पे तैनात हैं, और यात्रियों को जो है हर तरह की सुविधाएं सहूलियात रखी गई है और उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा श्री अमर

0: थाना जी का जो श्राइन बोर्ड है उनके यहाँ जो अमला है, जो एम्प्लॉयज है वो तैनात है, और यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को अगर किसी तरह की कोई असिस्टेंस की जरूरत हो, कोई दिक्कत हो, तो वो इन काउंटर्स पर जाके उनसे बात कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन जो है वो भी हो रही है, और साथ साथ हम यहाँ पे साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं, डूज एंड डोंट्स और एडवाइजरीज, और यात्रियों से भी कॉपरेशन की अपील की गई है। और साथ साथ अच्छी बात यह है कि जो वेस्ट डिस्पोजल का जो मैकेनिज्म है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, वो बड़ा ही खूबसूरत है, और बाकी जगहों की तरह यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, चाहे वो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या बाकी इदारे हो, जो डस्टबिन यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं और या बाकी चीजों को लेके जो सफाई सुथराई का एहतमाम किया गया है, जिसके लिए श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला भी यहाँ पे रात दिन जो तैनात हमें दिखाई दे रहा है वो किस तरह से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे। सो कुल मिला के जहाँ हम देख रहे हैं कि इन 5-6 दिनों के दौरान अभी तक यात्रा इंतहाई खुश असलूबी के साथ पीसफुल मैनर में जारी है।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए कि आप कह रहे हैं कि किस प्रकार का गियरअप किया है प्रशासन ने, क्योंकि ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ डिवोटीज इज़ एक्सपेक्टेड दिस ईयर, सो ऐसे में ये सब व्यवस्थाएं करना तो लाजमी है। फिलहाल के लिए स्टूडियोज़ की घड़ी इशारा कर रही है कि आकाशवाणी दिल्ली से समाचार का वक्त हुआ चाहता है। आपको समाचार के लिए आकाशवाणी दिल्ली लिए चलते हैं।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
2: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए

एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने

0: खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से

0: जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से PF खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथोनी अल्बनीज आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम में शरीक हुए। दोनों लीडरों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ भी मुजाकरात करेंगे। मरकज ने किसानों के मुफादात के तहफ़ के लिए तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातिज़ा के साथ गैर तदरीसी अमले के लिए सेहत की कैशलेस स्कीम शुरू की है। बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड की जानिब से इस साल के दौरान भारत की शरह तरक्की 7% रहने के तखमीने के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत के तौर पर अपना ताज बरकरार रखे हुए है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए हैं जिसमें कहा गया था कि ईरान के ताज़ा हमलों से जंगबंदी खत्म हो गई है। और विंबलडन जूनियर्स 2026 में भारत के अर्नब पापरकर ने एक तारीख रकम की है और वो 36 साल में ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो लड़कों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम और इक्तसादी रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार है। सप्लाई चेन में रुकावट के अलावा तवानाई के बहरान से भी दोचार है। वजीर आजम ने कहा कि ऐसे वक्त में ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए फितरी और लाजमी है कि वो एक भरोसेमंद शराकतदारों की हैसियत से आगे बढ़ें। वजीर आजम ने मजीद कहा कि माशी ताउन और तिजारती समझौता 2022 में एक रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान माशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं।
2: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बहुत से शोबों में भारत में दस्तियाब वसी मौके का जिक्र करते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया की मईशतों के दरमियान तकमील को भी वाजे किया।
2: न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की फाइनेंस, एजुकेशन, मेडिकल टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना के साथ मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस, स्पेस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उत्तर प्रदेश और केरलम के साथ नए अवसर बना सकते। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए।
1: जनाब मोदी ने मुल्क में तवील मुद्दती सरमाया

0: के लिए मौके का फायदा उठाने की गरज से ऑस्ट्रेलिया के सरमायाकारों को मदद किया और साथ ही साथ भारत में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों की बढ़ती हुई मौजूदगी का भी खैर मकदम किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: सीईओज फोरम के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इक्तिसादी रोडमैप बिजनेस से मुतालिक तकरीब से भी खिताब किया, जिसमें दोनों मुल्कों के 200 से ज्यादा सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फितरी तालमेल के बारे में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मुश्तरका जमहूरी कदरें भारत बहरुल काहिल के लिए एक मुश्तरका विजन, अवाम से अवाम के दरमियान वसी ताल्लुकात और मजबूत सियासी मफाहमत ने दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी शराकत दारी के लिए एक जबरदस्त बुनियाद की राह हमवार की है, जिससे दोनों मुल्क मिलकर आगे बढ़ेंगे और खुशहाली लाएंगे। अब हम मेलबर्न में अपने नामानिगार के पास चलते हैं, जो वजीर आजम के दौरे के बारे में मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम ने मुतबादिल सिफारती रास्तों से हटकर एक मजबूत मुस्तकबिल के लिए महफूज इक्तिसादी इंजन की तरफ एक फैसला कुन तब्दीली की निशानदेही की है। वजीर आजम मोदी ने लामरकजी इक्तिसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का इशारा देते हुए बराह रास्त मुल्क से मुल्क के कॉरिडोर का मुतालबा किया है, जो ऑस्ट्रेलिया के खाम मसाइल को बराह रास्त भारत के बड़े पैमाने पर साफ सुथरी तवानाई, चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचा पाइपलाइन से जोड़ते हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बाद में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तजारत, दिफा, अहम टेक्नोलॉजी, तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के 3 रोजा दौरे पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे। वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम की दावत पर उस मुल्क का दौरा कर रहे हैं। मरकज ने तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आम की खरीदारी को मंजूरी दे दी है, ताकि किसानों के मुफादात का तहफ्फुज़ किया जा सके। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने बताया कि इससे किसानों के लिए बेहतर कीमत को यकीनी बनाया जा सकेगा और मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से मजबूरी में कम कीमत पर फरोख्त करने से उनका तहफ्फुज़ किया जा सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: ये मंजूरी तमिलनाडु के जरिए पेश करदा तजवीज पर मुबनी है। इस मंजूरी के तहत 87,000 मैट्रिक टन से ज्यादा खोपरा रियासत में फरोख्त किया जा सकेगा। मंजूर शुदा खरीदारी के कम से कम कुल इमदादी कीमत की कदर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मजीद ये कि इस साल के दौरान तमिलनाडु में 96,000 मैट्रिक टन से ज्यादा तोतापुरी आमों की खरीदारी को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS के तहत मंजूरी हासिल हुई। खरीदारी MIS के तहत की जाएगी। इंटरवेंशन स्कीम का मकसद इस बात को यकीन बनाना है कि तोतापुरी आम की काश्त करने वाले किसानों को उनकी पैदावार की मुनसिफाना और मुनासिब कीमतें हासिल हो सकें और मार्केट की कीमतों में अचानक गिरावट की वजह से नुकसान पर फरोख्त करने से उनका तहफ्फुज़ किया जा सके। इस इकदाम से तवक्को है कि कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सकेगा और किसानों की आमदनी का तहफ्फुज़ किया जा सकेगा। सखलीन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातिज़ा के साथ साथ गैर तदरीसी अमले के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम शुरू की है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से चीफ मिनिस्टर्स टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम का आगाज किया, जिसके तहत 15 लाख से ज्यादा तदरीसी अमले को 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर फराहम किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: इस स्कीम के तहत रियासत भर के असातिज़ा और उनके खानदानों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। बुनियादी और सेकेंडरी तालीम से वाबस्ता तकरीबन 15 लाख असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगे। बाकायदा असातिज़ा के अलावा इस स्कीम से शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर्स, कुक्स और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अहल अमले को भी फायदा पहुँचेगा।
4: اساتذہ اور ان کے اہل خانہ کو سماجی تحفظ فراہم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ساتھ ایک میٹنگ میں مفاہمت نامے پر دستخط بھی کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے اساتذہ کی صحت اور سماجی تحفظ کو یقینی بنانے کے اپنے وعدوں کو پورا کیا ہے۔ اتر پردیش کے محکمہ بنیادی تعلیم کے ملازمین کے لیے یہ جامع سماجی تحفظ اور انشورنس پروگرام بھارت میں اپنی نوعیت کا پہلا اقدام ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے سی ایس آئی آر یو جی سی نیٹ جون 2026 کے لیے ایڈوانس سٹی انٹیمیشن سلپ جاری کر دی ہے۔ یہ امتحان اس ماہ کی 17 اور 18 تاریخ کو منعقد کیا جائے گا۔ طلبہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ امتحان کے لیے الاٹ کیے گئے شہر کے بارے میں جاننے کے لیے آفیشیل ویب سائٹ www.cisirnet.nta.nic.in سے اپنی سلپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ بین الاقوامی مالیتی فنڈ آئی ایم ایف کی جانب سے رواں کیلنڈر سال کے دوران بھارت کی ترقی کی شرح 7% رہنے کے تخمینے کے ساتھ ہی بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت کے طور پر اپنا تاج برقرار رکھے ہوئے ہے۔ آئی ایم ایف کی فلیگ شپ ششماہی رپورٹ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپ ڈیٹ نے اگلے کیلنڈر سال میں بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار کی شرح معتدل ہو کر 6.4% رہنے کا تخمینہ لگایا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، بہار، مشرقی راجستھان، مدھیہ پردیش، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم اور مغربی اتر پردیش میں شدید سے شدید ترین بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج دن میں ساحلی کرناٹک، مشرقی اتر پردیش، گنگائی، مغربی بنگال، گجرات، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران آج صبح قومی راجدھانی کے مختلف حصوں میں اوسط بارش ہوئی، جس سے شہریوں کا کافی راحت ملی۔ امریکہ نے ایران پر پھر سے ہوائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ حملے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کیے گئے جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کے تازہ حملوں سے جنگ بندی مؤثر طور سے ختم ہو گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر الزام لگایا کہ وہ اب نئے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے تازہ حملے جوابی کارروائی میں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اس بات کے لیے بھی خبردار کیا کہ اگر ایران نے مزید حملے جاری رکھے تو واشنگٹن اور زیادہ سختی سے جوابی کارروائی کرے گا اور ایرانی حملوں کا سخت جواب دے گا۔ بھارت کی ارنب پرکن نے 36 سال میں ویمنڈل جونیئرز 2026 میں لڑکوں کے سنگلز کوارٹر فائنل میں پہنچنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن کر تاریخ رقم کی ہے۔ 18 سالہ پاپرکن نے کوارٹر فائنل میں محض 52 منٹ میں جاپان کے ریو تباتا کو 6-2-6-1 سے ہرایا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
4: شکریہ فیصل۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 3 روزہ سرکاری دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد آسٹریلیا پہنچے۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ بھارت آسٹریلیا کے تعلقات کو ایک نئی سمت دے گا۔ روزنامہ پرتاب نے کئی ریاستوں میں موسلادھار بارش کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے۔ مانسون نے پکڑی رفتار، دہلی این سی آر میں بارش شروع، ممبئی سے اتر پردیش تک سنگین صورتحال۔ وزیر داخلہ نے 3 ریاستوں کے وزرائے اعلی سے فون پر بات کر کے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا۔ روزنامہ انقلاب نے اپنے عالمی صفحے پر ایک اہم خبر کو سرخی بنایا ہے، مشرقی وسطی میں پھر جنگ کے خطرات، صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ ختم کیا۔ اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، وجے دیوس سے پہلے فوج نے کارگل کے جابازوں کو یاد کیا، نائب صدر جمہوریہ آج 1 روزہ دورے پر اڈیشہ جائیں گے۔
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب اینتھونی البانیز آج صبح میلبرن میں بھارت آسٹریلیا کے سی اوز فورم میں شریک ہوئے۔ دونوں لیڈروں نے بھارت اور آسٹریلیا کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں سے بھی ملاقات کی۔ وزیراعظم نریندر مودی آج میلبرن میں آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینتھونی البانیز کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے۔ مرکز نے کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے تمل ناڈو میں کسانوں سے کھوپرا اور طوطا پوری آموں کی خریداری کو منظوری دے دی ہے۔ اتر پردیش حکومت نے ریاست میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ غیر تدریسی عملے کے لیے صحت کی کیش لیس اسکیم شروع کی ہے۔ अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर ट्रंप के बयान के बाद किए गए हैं, जिसमें सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के ताजा हमलों से जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
5: सुबह के 8:45 होने को हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का ये विशेष प्रसारण FM बालतल से 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz। इसके साथ साथ आप हमें DTH पर सुन रहे हैं। न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप पर भी हम उपलब्ध हैं। न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप पर आप ट्यून इन कर सकते हैं हमारा चैनल जिसका नाम है आराधना, और आप हमारी ये सर्विस सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ हम वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है। सुबह 6:53 से शुरू होता है और शाम 6 बजे आरती के साथ ये सभा समाप्त होती है। थोड़ी ही देर पहले हमने जाना कि नमक्कम और चमक्कम का नाम कैसे पड़ा, ये किस वेद का हिस्सा है और इनका मूल उद्देश्य क्या है। अब एक महत्वपूर्ण बात, या कह लीजिए कि एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। जब हम आज शिवा का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक परिचित रूप उभर कर आता है, जैसे जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और कैलाश पर विराजमान महादेव। लेकिन वैदिक साहित्य में जिस देवता की स्तुति की गई है उनका नाम प्रमुख रूप से रुद्र है। जी हाँ, अधिकांश वैदिक और पौराणिक विधवाओं के अनुसार रुद्र और शिवा एक ही परम तत्व के विभिन्न रूप और नाम हैं। वैदिक युग में रुद्र नाम अधिक प्रचलित था, जबकि बाद की पौराणिक परंपरा में शिवा नाम व्यापक रूप से प्रसिद्ध हुआ। शिवा शब्द का अर्थ ही है मंगलकारी, कल्याणकारी, या कह लीजिए शुभ स्वरूप। और इसीलिए रुद्र के उग्र रूप के साथ साथ उनका शांत, दयालु और कल्याणकारी स्वरूप को भी वैदिक मंत्रों में बार बार याद किया गया है। अब सवाल है, रुद्र का अर्थ क्या है? इसके बारे में विभिन्न व्याख्याएं मिलती हैं। जहां कुछ आचार्य कहते हैं कि रुद्र वो हैं जो दुख और अज्ञान को दूर करते हैं, कुछ अन्य व्याख्याओं के अनुसार रुद्र वो शक्ति हैं जो प्रकृति की अपर ऊर्जा का प्रतीक हैं। वैदिक मंत्रों में रुद्र को एक ऐसे देवता के रूप में देखा गया है जो एक साथ भयंकर भी है और करुणामय भी। यही दोहरा स्वरूप श्री रुद्रम की सबसे अनोखी पहचान है। हम श्री रुद्रम नमक्कम का अगला हिस्सा पेश करते हैं और इसमें अभी 2-4 मिनट बाकी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चमक्कम के बारे में। जो यहाँ नमक्कम की बात हो और चमक्कम की बात ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है।

0: नमक्कम आप सुन रहे थे श्री रुद्रम नमक्कम, और उसके बाद हम बात करेंगे चमक्कम के बारे में और वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फ़िलहाल हम तक पहुंच रहे हैं रहीम रिजवान गांदरबल के बेस कैंप से। जी रिजवान, बताइए क्या कुछ तफसीलात आपके पास हैं।
1: श्रोताओं, स्वागत करते हैं आपका हम इस विशेष कार्यक्रम में। इस आयोजन के जरिए हम आप तक श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के बारे में महत्वपूर्ण सूचना पहुंचाते हैं। बालतल क्षेत्र में वातावरण कैसा है, मौसम की स्थिति या तापमान के बारे में हम आप तक पल पल की खबरें पहुंचाते हैं। आज बालतल के पूरे क्षेत्र में मौसम सुहाना है, धूप खिली हुई है। सुबह सवेरे से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसका भरपूर आनंद लेते हुए आज सातवें रोज सुबह 5 बजे तक बालतल बेस कैंप से 8,506 यात्री पवित्र गुफा की तरफ दर्शन के लिए रवाना हुए। दुमेल एक्सेस कंट्रोल गेट पर RFID कार्ड हासिल करने वाले इन श्रद्धालु में 6,612 पुरुष, 1,618 महिलाएं, 84 बालक बालिका, 37 साधु, 21 साधिया, 3 ट्रांसजेंडर एवं 131 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव का पवित्र नाथ करते हुए ये श्रद्धालु जोश और जज्बे के साथ पैदल डांडी पिट्ठू तथा घोड़ों पर सवार होकर गुफा की ओर निकल पड़े। ऊंचे पर्वतों के बीच बालतल से पवित्र गुफा तक 14 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय करके ये बाबा बर्फानी के वक्त गुफा पहुंचकर पूजा पाठ में शिरकत करेंगे। पवित्र गुफा में माथा टेक कर देश एवं घाटी की अमन शांति तथा विकास के लिए प्रार्थना करेंगे। शिवलिंगम का दर्शन करके उन्हें वापस बालतल की तरफ आने की अनुमति दी जाएगी। श्रोता, वो बीती रात देर गए तक 22,883 बाबा बर्फानी के वक्त शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित बालतल बेस कैंप पहुंचे। इन श्रद्धालु में 15,231 पुरुष, 698 महिलाएं, 320 बालक बालिका, 131 साधु, 8 साधिया, 8 ट्रांसजेंडर एवं 295 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। दर्शन करके सुरक्षित वापस पहुंचने वाले श्रद्धालु ने जिला प्रशासन के द्वारा किए गए व्यवस्थाओं पर इत्मीनान का इजहार करते हुए आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष प्रशासन ने यात्रा रूट के हर पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं। इस बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। श्रीनगर कारगिल राजमार्ग के साथ साथ बालतल से पवित्र गुफा तक जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, BSF, CRPF, SSB, ITBP, NDRF, SDRF, वॉलंटियर्स एवं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों के अलावा अन्य एजेंसियों को चौबंद रखा गया, जबकि अन्य विभागों के अधिकारियों को भी जगह जगह मुतहरिक रखा गया ताकि श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा के दौरान किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते 6 दिनों के दौरान देश के विभिन्न भागों से घाटी आगमन होने वाले 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा जाकर माथा टेका तथा शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस रवाना हुए। इस तरह बालतल मुखी मार्ग से तीर्थ यात्रा संपूर्ण तरीके से प्रगति पर है। श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आपकी ये तीर्थ यात्रा सुखद तरीके पर सफल हो जाए। जी आमिर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान आपका करना चाहेंगे इस विस्तृत जानकारी के लिए। आप पिछले कई दिनों से, लगभग एक हफ्ते से बालतल बेस कैंप में बने हुए हैं, और हमें ये बताइएगा चलते चलते कि प्रशासन ने इस वर्ष किस प्रकार का गियर अप किया है, क्योंकि अनुमान लगाया जाता है कि इस वर्ष जो है भक्तों की एक भारी संख्या जो है वादी वारिद होगी।
1: जी आमिर, बिल्कुल, आए रोज हम देखते हैं कि देश के विभिन्न भागों से घाटी आगमन होने वाले जो बाबा बर्फानी के भक्त हैं, तो पहली बार इतिहास में ऐसा देखने को मिल रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ यात्री बालतल बेस कैंप पहुंच रहे हैं। और ये जिला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह इस पूरी सिचुएशन को टैकल करके बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं उनको एक लाए अमल के तहत पवित्र गुफा की तरफ रवाना करते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज उस वक्त उन्हें देखने को मिला कि जो ही बहुत सारे यात्री पंजीकरण के बगैर ही बालतल बेस कैंप पहुंचे, तो उस वक्त पूरे प्रशासन के जो अफसर जो है जिनकी निगरानी डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्री जतिन किशोर और SSP गांधरबल श्री सुधांशु धामा कर रहे हैं, तो उनकी निगरानी में पूरी ये सिचुएशन है अच्छी तरीके से टैकल की गई है और इन यात्रियों के लिए तमाम तर जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध रखी गई हैं और इन्हें गुफा की तरफ रवाना कर दिया गया। और एक अहम बात हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं वो ये है कि जो नुनवन बेस कैंप पहलगाम की तरफ से यात्री पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो रहे हैं उनमें से करीबन 95% यात्री बागटल बेस कैंप से वापस आ रहे हैं और उन यात्रियों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिला प्रशासन के लिए, लेकिन जिला प्रशासन ने बाजाता तौर उसका मुकाबला किया है और कर रहे हैं और तमाम यात्री जो देश के विभिन्न भागों से यहाँ पहुंचते हैं उनके लिए जगह जगह यानी यात्रा रूट के हर पड़ाव पर उच्चतर की सुविधाएं उपलब्ध रखी गई है। और एक बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि वो ट्रांजिट कम शादीपोरा और ट्रांजिट कम मनगाम की भी, क्योंकि 5 बजे के बाद जो भी यात्री बालतल बेस कैंप से या जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से यहाँ पहुंचते हैं उन्हें रात भर ट्रांजिट कम शादीपोरा या ट्रांजिट कम मनगाम में रुकना पड़ेगा क्योंकि वहाँ काफी भीड़ भाड़ होती है। लेकिन जो ही यात्री काफी मात्रा में यहाँ पहुंचे हैं तो उन्होंने कट ऑफ टाइम जो 5 बजे रखा था, लेकिन उन कभी कभार उन्हें 3 बजे ही कट ऑफ टाइम रखना पड़ता है क्योंकि यात्री ज्यादा जो है वो बालटल के बजाय अब शादीपुरा ट्रांजिट कम या ट्रांजिट कम मनगाम में रात भर रुकेंगे और यहाँ रात्रि विश्राम के बाद इन यात्रियों को पवित्र गुफा या जम्मू भगवती बेस नगर की तरफ जाने की अनुमति दी जाती है। और इस पूरे क्षेत्र की निगरानी जो कर रहे हैं वो ACR गांधरबल जो यात्रा अफसर ट्रांजिट कम मनगाम है डॉक्टर शेख सलाउद्दीन उनकी निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है और इस तरीके से जो यात्रा है वो खुश असलूबी से जारी है।
0: और रिजवान, गांधरबल बेस कैंप में बने रहने के लिए और हम तक विस्तृत जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका।
0: गांधरबल से हमारे वरिष्ठ पत्रकार रहीम रिजवान हमसे जुड़े हुए थे और ने बताया कि किस तरह की व्यवस्थाएं इस वर्ष प्रशासन ने की है भक्तों के लिए और प्रशासन की यही कोशिश कि आपकी जो यात्रा है वो सुखद तरीके से अपने अंजाम को पहुंचे और आप सफलता के साथ आसानी के साथ चढ़ाई चढ़ सकें। आपके लिए फैसिलिटीज़ रखी गई हैं, आपके लिए गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया है, आपके लिए जो है वो सुरक्षा बल 24 घंटे तैनात किए गए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए वो रखे गए हैं, यानी यूँ कह सकते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जी हाँ, आप अच्छे से आइए, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए और कोशिश कीजिए कि भगवती नगर बेस कैंप में ही आपका जो सारा कार्य है वो मुकम्मल हो जाए ताकि आगे आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े।

बड़े। तो हम बात कर रहे थे समाचार से पहले चमक्कम और नमक्कम के बारे में। हम श्री रुद्रम को इसके जो दो अमूल्य भाग हैं नमक्कम और चमक्कम उसको समझने की रोचक यात्रा पर हैं, यूं कह लीजिए। पिछले भाग में हमने नमक्कम के बारे में जाना, हमने देखा कि किस तरह नमक के माध्यम से भक्त भगवान रुद्र के अनंत स्वरूपों को प्रणाम करते हैं। लेकिन अब बारी है श्री रुद्रम के दूसरे भाग की यानी चमक्कम की। अगर नमक्कम को समर्पण कहा जाए तो चमक्कम को संकल्प और प्रार्थना कहा जा सकता है। जी हाँ, लेकिन यहाँ एक बात जो है बहुत स्पष्ट समझनी होगी। कई बार लोग चमक्कम के बारे में सुनते हैं कि ये समझते हैं कि ये जो है ये सिर्फ इच्छाओं की एक लंबी सूची है, लेकिन वैदिक आचार्यों की व्याख्या कुछ और ही बताती है। जी हाँ, वो बताते हैं कि चमक्कम का केंद्रीय संदेश है, जी हाँ, इसका संदेश है जीवन की पूर्णता। इसका नाम चमक्कम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें बार बार चा मे शब्द आता है। संस्कृत में चा का अर्थ है और मे का अर्थ है मुझे, यानी और मुझे भी प्राप्त हो। जी हाँ, लेकिन सवाल है क्या प्राप्त हो सिर्फ धन, सिर्फ संपत्ति, सिर्फ सफलता? अरे बाबा नहीं, ऐसी बात नहीं है। यही चमक्कम की सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें जो कुछ मांगा गया है उसमें जीवन का लगभग हर पहलू शामिल होता है। सबसे पहले शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, उसके बाद ऊर्जा, बुद्धि, समृद्धि, साहस, संयम, ज्ञान, सत्य, आहार, यानी जीवन की आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति, सामाजिक समृद्धि और अनंत आध्यात्मिक उन्नति। इसलिए कई विद्वान कहते हैं कि चमक्कम का संदेश है जीवन का कोई पहलू अधूरा न रहे। अब आइए चमक्कम पेश करते हैं।

जनाब, चमकम तो आपने मुकम्मल कर लिया या आपने सुन लिया। ये भी रोचक बात है कि चमकम में प्रार्थना का भाव कभी स्वार्थ का रूप नहीं लेता। इसमें जो मांगा गया है वो ऐसा जीवन है जो संतुलित हो, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ हो, विवेक हो, कर्तव्य निष्ठ हो और समाज के लिए उपयोगी हो। इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो चमकम सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समग्र समाज के लिए भी एक मंगल कामना है। अब एक और रोचक तथ्य, चमकम में भी 11 अनुवाक होते हैं। हर अनुवाक में जीवन के अलग अलग पहलुओं की प्रार्थना की गई है। कहीं इंद्रियों की शक्ति का उल्लेख है, कहीं प्राण शक्ति का, कहीं अन्न और पोषण का, कहीं विद्या और विवेक का, कहीं याज्ञ और धार्मिक जीवन का, और अंत में उस पूर्णता का जहाँ व्यक्ति के जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का संतुलित हो। इसीलिए कई वैदिक विद्वान नमकम और चमकम को एक दूसरे का पूरक बताते हैं। श्रोताओं, अब पेश करते हैं गायत्री मंत्र। ये मंत्र सूर्य के सविता रूप की उपासना करता है और मन, बुद्धि और आत्मा को प्रकाशित करने की प्रार्थना है। हालांकि गायत्री मंत्र सीधे रूप से भगवान शिव का मंत्र नहीं है, लेकिन शिव को वेदों का सार और गायत्री का आधार भी माना गया है। इसलिए शिव भक्ति में भी गायत्री मंत्र का उच्चारण अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मंत्र का नित्य जाप मन को शांत करता है, विवेक को जागृत करता है और साधक को सत्य ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति और अग्रसर करता है। इसकी विद्य ध्वनि केवल एक प्रार्थना ही नहीं बल्कि मानव चेतना को ईश्वरीय प्रकाश से जोड़ने का एक अद्भुत माध्यम भी है। अनुराधा पौडवाल की आवाज़।

0: हम रुख करते हैं आकाशवाणी श्रीनगर का, जहां से आप समाचार सुनेंगे।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है, खबरों का बुलेटिन लेकर मैं इशफाक अमीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत कर रहे हैं। दोनों रहनुमा तिजारत, दिफा, टेक्नोलॉजी, तालीम और आवाम से आवाम तक के रबतों को मुस्तकम करने से मुतलिक अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे से भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। इससे पहले कल वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के 3 रोज़े दौरे पर मेलबर्न पहुँच गए। मेरा युवा भारत के डायरेक्टर नितिन हांगलू ने लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एलजी को जम्मू कश्मीर में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए माई भारत के इकदाम से आगाह किया। दरियासा एडवोकेट तबस्सुम रहीम ने एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात करके बडगाम में ईंट भट्टों के मालिकान के मामला उनकी नोट्स में लाए। इसी तरह स्टूडेंट राइट्स एक्टिविस्ट और गांधी किंग फाउंडेशन जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी इंजीनियर एहतशाम खान भी एलजी से मुलाकात हुए। इसी दौरान दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के डायरेक्टर न्यूज़ काजी सलमान ने भी लोक भवन में एलजी के साथ मुलाकात की। उन्होंने एलजी को दूरदर्शन की तरफ से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान और दीगर फलाही स्कीमों के ताल्लुक से पेश किए जाने वाले बेदारी प्रोग्रामों के बारे में जानकारी दी। कल SKICC श्रीनगर में महकमा स्कूली तालीम की तरफ से एजुकेशन कन्क्लेव 2026 बुनियाद से बुलंदी तक मुनाकिद हुआ। इस दौरान वजीर अला अमर अब्दुल्ला ने तालीमी शोबे में बुनियादी ढांचे को तकवीत बख्शने के लिए कई इकदाम का ऐलान किया। उन्होंने नए तैनात किए गए 117 लेक्चररों में तैनाती के आर्डर तकसीम किए। इस मौके पर वजीर अला ने तालीम की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि हुकूमत मियारी तालीम को बुलंदियों तक पहुँचाने में कोई दकीका फरोगजाश्त नहीं करेगी।
2: हमारी लगातार कोशिश है कि जहाँ पे गैप्स हैं, गैप्स को फिल किया जाए, खासकर जमीनी सतह पे, कटिंग एज लेवल बीच बीच में ये पोस्ट जो है फिलअप के लिए रेफर किए हैं। आजकल पोस्ट भरने में टाइम पहले से थोड़ा ज़्यादा लगता है। ऑर्डर तैयार हुए, उनको बांटे गए और जल्द से जल्द जो है ये बच्चों को तालीम फराहम करना शुरू करें।
1: तकरीब पर काबिने वज़रा सकीना इत्तु, जावेद अहमद डार, वजीर अला के मशीर नासिर असलम वानी, कई अरकानी कानून साजिया और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दरियासना वजीर तालीम सकीना इत्तु ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में जेर तालीम 9वीं से 12वीं जमात के AAY तबके के तलबा का पूरा फीस माफ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तारीखी फैसले से वजीर अला अमर अब्दुल्ला की तरफ से किए गए वादे को पूरा किया गया है। खुशगवार और सुहाने मौसम के बीच सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी है और अब तक लगभग 1,40,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। बेशतर यात्री गुफा में हाजिरी देने के बाद वापस अपने अपने घरों को लौट गए हैं। यात्री वादी की बेमिसाल खूबसूरती और मुनफरिद मेहमान नवाजी से काफ़ी मुतमइन हैं। दरियासना आज भगवती नगर जम्मू के बेस कैंप से 5,663 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जत्था वादी की तरफ रवाना हुआ, जिनमें से 2,370 यात्री बालतल जबकि 3,293 यात्री पहलगाम के रास्ते यात्रा कर रहे हैं। नायब वजीर अला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कल उधमपुर और कटरा का दौरा करके वहां तरक्याती कामों और कलीदी नौयत के प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड अस्पताल का भी दौरा किया और वहां फर्स्ट जकलाई के एक सूबेदार की इयादत की। बाद में उन्होंने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का भी मुआयना किया और इसके काम की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुलरहीम रातिर ने यूसमर्ग, हाईजन, नागबल और बडगाम के दीगर इलाकों में सासकी के तहत दरदस्त लिए गए तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो इन कामों को की जल्द अज जल्द तकमील को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि कामों के मियार के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कई मकामात पर अवामी वफूद के साथ मुलाकात की और उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कल श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का जायजा लेते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर में टीबी स्क्रीनिंग मुहिम के तहत हाई रिस्क देहात की निशानदेही की जानी चाहिए। मीटिंग में बताया गया कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के इलाकों में पिछले 3 हफ्तों के दौरान 6,85,000 अफराद की निशानदेही की गई है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान ट्रैफिक की बेहतर निजामत को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे इकदाम नीज कलीदी सड़क प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने ट्रैफिक निजाम में बेहतरी लाने और लोगों की आवाजाही में आसानी पैदा करने के लिए बैन महकमा जाती ताउन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर फजल हसीब ने अर्बन फॉरेस्ट्री डिवीजन के तहत हारी पर्वत रेंज का दौरा करके वहां पेड़ लगाया।

0: ने लैंडस्केपिंग और इलाके की खूबसूरती को बढ़ावा देने के लिए दर्ज लिए गए दीगर इकदाम का जायजा लिया। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.6 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 21.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आपने आकाशवाणी के श्रीनगर केंद्र से समाचार सुना। अब आइए अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में गायत्री मंत्र का अगला हिस्सा पेश करते हैं।

श्रोताओं, आपने गायत्री मंत्र सुना। ये आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और साथियों की। यह हमने आपके लिए पेश किया और सुबह 8 बजे तक का दर्शन अपडेट हम तक पहुंचा है। हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे 2284 भक्तों ने बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में हाजिरी देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। जी हाँ, आज 9 तारीख को अभी तक 2284 भक्तों ने बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में हाजिरी दी है और उनका दर्शन प्राप्त किया है। इनमें पुरुषों की संख्या 1575, महिलाएं 605, बालक 25, साधु 19 और सुरक्षाकर्मी 60 शामिल हैं। ये था सुबह 8 बजे तक का दर्शन अपडेट जो हम तक पहुंचा। फिलहाल एक रुद्र सूक्तम आपके लिए पेश करते हैं, श्री सूक्तम। उसके बाद 10 बजे के बाद मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे और आगे आपके लिए भजन और प्रोमोस भी पेश करते रहें जो दिशा निर्देश जम्मू कश्मीर श्राइन बोर्ड के द्वारा हम तक

पहुंचे हैं। क्या क्या आप साथ ला सकते हैं जब आप यात्रा के लिए आएँ? किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है? क्या क्या प्रोसेस आपने करना है रजिस्ट्रेशन के दौरान? किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है चढ़ाई चढ़ते वक्त? और मुख्तलिफ चीज़ें उन प्रोमोज़ में दोहराई जाती हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे और चंद नए भजन आपके लिए पेश करेंगे जो हम तक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पहुंचाए हैं। फ़िलहाल आपके लिए ये श्री सुक्तम।

0: ओम शांति शांति ओम। जी हाँ, आपने ये श्री सुक्तम सुना। चंद प्रोमोज आपके लिए।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
1: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और

0: एक समान गति सुनिश्चित करें, खाली पेट यात्रा ना करें, और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का

0: शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
1: विशेष प्रसारण प्रसारित हो रहा है आकाशवाणी के FM बालतल से 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमें DTH पर सुन रहे हैं, आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी सुन रहे हैं और आप हमें वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी समाप्त कर रहे हैं। देखिए श्रोताओं, 10:07 होने को हैं। हम आपके लिए इस वक्त जो है शो भजन पेश करते हैं। ये जो भजन है भगवान शिव का, एक संगीत या स्तुति नहीं है बल्कि भक्ति, शांति और कह लीजिए कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक पवित्र माध्यम है। शिव भजन सुनने या गाने से मन को सुकून मिलता है, तनाव कम होता है और भक्त के अंदर श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई शिव की आराधना भक्त को साहस और कह लीजिए कि आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। शिव भजन हमें वैराग्य, दया, क्षमा और सरलता जैसे गुणों की याद दिलाते हैं जो भगवान शिव का, जो भगवान शिव के स्वरूप का प्रतीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हम तक कुछ नए भजन पहुंचाए हैं जो हम आपके लिए आज पेश करेंगे। पहले सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

जी हाँ, ये शुभजन आपने सुना जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हम तक पहुंचाया है, और हमारे पास सुबह 9 बजे तक का दर्शन अपडेट पहुंचा है। सुबह 9 बजे तक आज 9 जुलाई को 4672 भक्तों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी है। और ये जो भक्त हैं 4672, इनमें पुरुष 3035, महिलाएं 1455, बालक 45, साधु 34, साध्वीज 3 और सिक्योरिटी फोर्सेस 100 शामिल हैं। जी हाँ, सुरक्षा कर्मी जो है 100 इसमें हैं, और कुल मिलाकर 4672 4672 भक्तों ने अभी तक बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त किए हैं। मजीद आपको ये बताना चाहेंगे कि हम जो हमारा ये ट्रांसमिशन है, इसको कैसे हम बेहतर बनाएं, इसके लिए आपके कोई विचार, आपका कोई कमेंट, आप अपनी टिप्पणी करना चाहेंगे तो आप ज़रूर हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। इस वर्ष जो है हमने ईमेल की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। हम जो है ईमेल पर भी दस्तियाब हैं, आप हम तक पहुंच सकते हैं ईमेल के ज़रिए। हमारा ईमेल आईडी है akashvanibaltal@gmail.com। जी हाँ, AKASHVANI आकाशवाणी BALTAL baltal@gmail.com। इसी के साथ साथ हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो है 9596990954, 9596990954। बहुत से भक्तों की फरमाइशें हमें आ रही हैं कि हमें कुछ शिव भक्त सुनाइए। ज़रूर आपको सुनवाएंगे चंद शिव भजन, लेकिन उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक और शिव भजन, उसके बाद आपकी जो फरमाइश है, जो आप भजन सुनना चाहते हैं, वो भी पूरा करेंगे।

भजन आपको ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन पहले आपको सुबह 10 बजे तक का दर्शन अपडेट देते चलें। सुबह 10 बजे तक 7460 भक्तों ने बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में हाजिरी देकर दर्शन किए हैं, और इनमें पुरुष 4837, महिलाएं 2386, बालक 72, साधु 47 और साध्वीज 3 शामिल हैं। और इस जत्थे के साथ, इस काफिले के साथ 115 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं जिन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त किए हैं। ये सुबह 10 बजे तक का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम सुहाना है, दोनों मार्गों में यात्रा जो है सुचारू रूप से जारी है। पहलगांव से भी और बालटल से भी यात्रा जो है उसका सिलसिला जारी है, और एक अच्छा मौसम है आज। अच्छे मौसम में आप यात्रा कर सकते हैं, आप अपनी जो ऊर्जा है, क्षमता है वो बनाए रखें, और बाबा बर्फानी का नाम लेकर उसका जो पवित्र जाप है वो करते रहें, और नज़र रखें कि बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में हाजिरी देनी है, और वहीं जो है गुफा में दम लेना है, और वहीं पर जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, और फिर आप जो है आपको प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसी के हिसाब से आपको अगली रोज़ जो है अपने घरों की ओर रवाना कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आप भजन सुनिए, 11 बजे तक का दर्शन अपडेट हम जल्द लेके आते हैं।

मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से प्राप्त हुए चंद नए भजन हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। कुछ और भजन आपकी फरमाइश पे पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन पहले आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया जा रहा है। श्रोताओं, पहलगाम और बालटल दोनों यात्रा मार्गों पर कैंप, चिकित्सा सुविधाएं, लंगर, पीने का साफ पानी, सफाई और एमरजेंसी यानी तत्काल रेस्पॉन्स की मजबूत व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम्स, हेल्प डेस्क और 24 घंटे का मेडिकल सपोर्ट उपलब्ध कराया गया है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की सहूलियत के लिए एडिशनल हेल्प डेस्क और सुविधाओं को और मजबूत किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्गों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती के साथ साथ टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग और लगातार सर्विलेंस पर जोर दिया जा रहा है, ताकि हर यात्री अपनी यात्रा जो है वो सुरक्षित तरीके से पूरी कर सके। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वो सिर्फ अपनी रजिस्टर्ड तारीख पर ही यात्रा के लिए निकलें। बिना रजिस्ट्रेशन या निर्धारित तारीख के पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से फिलहाल यात्रा को स्थगित करने की भी अपील की गई है, ताकि भीड़ को बेहतर तरीके से संभाला जा सके और सभी को सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिल सके। यात्रा से जुड़े अधिकारी लगातार ग्राउंड पर कैंपों और यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं और ज़रूरत के मुताबिक व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है। इस बीच देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से जारी है और प्रशासन का पूरा ध्यान यात्रियों की सुरक्षा सुविधा और सुगम दर्शन पर केंद्रित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि यात्रा से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट 144 जो हाँ श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल जो हेल्पलाइन उनकी जो उनका जो नंबर है हेल्पलाइन नंबर वो है 144-64। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, इस पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर्स जो हैं जम्मू के लिए 1800-1807198, ये जम्मू का हेल्पलाइन नंबर है। आपको किसी भी दुविधा, किसी भी जो है मुश्किल का सामना है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और कश्मीर क्षेत्र के लिए जो हेल्पलाइन नंबर प्रशासन द्वारा जारी किया गया है वो है 1800-1807199। जो हाँ, किसी भी सहायता के लिए जो है यात्री जो है इस पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि देश और विदेश से जुड़े कई जो श्रोता हैं उनकी फरमाइश पर हम पेश कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ को समर्पित एक भक्ति भजन। आइए श्रद्धा और भक्ति के इस सुरमाई सफ़र का आनंद लेते हैं। आपके लिए पेश करते हैं ये प्यारा सा भजन।

बस इंतज़ार था इस भजन के ख़त्म होने का और हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताज़ा तरीन अपडेट दर्शन के हवाले से। 11 बजे तक का रिपोर्ट हम तक पहुंचा है। 11 बजे तक 10,805 भक्तों ने पवित्र गुफा में हाज़िरी देकर बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। एक रिकॉर्ड तोड़ नंबर फ़िलहाल के लिए आपको बता दें कि 10,805 भक्तों ने सुबह 11 बजे तक बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में हाज़िरी दी है। इनमें से अगर बात करें महिलाओं की, महिलाएं 3,569, पुरुष 6,940, बालक 95, साधु 63, साध्वी 4 और सुरक्षाकर्मी 134 शामिल हैं। कुल मिलाकर ये जो संख्या बनती है 10,805 भक्तों ने अभी तक बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। 12 बजे तक का रिपोर्ट जल्द आपके लिए पेश करेंगे। फिलहाल के लिए एक भजन आप तक पहुंचाते हैं और फिर 12:30 पर आपको आकाशवाणी श्रीनगर लिए चलते हैं समाचार के लिए।

भजन आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फ़िलहाल के लिए आपको बता दें कि 12 बजे तक का दर्शन अपडेट हमें प्राप्त हुआ है। अभी तक कुल मिलाकर 13,879 भक्तों ने बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में हाज़िरी देकर उनका दर्शन प्राप्त किया है, जहां ये संख्या जो हमने आपके साथ साझा की 12 बजे तक की 13,879।

0: भजन तो चलते रहेंगे, फिलहाल के लिए आकाशवाणी श्रीनगर से समाचार सुनते हैं।
1: सकीना इतू, जावेद अहमद डार, वजीर अला के मशीर नासिर असलम वानी, कई अरकान कानून साजिया और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खुशगवार और सुहाने मौसम के बीच सालाना श्री अमरनाथ यात्रा खुश असलूबी से जारी है और अब तक लगभग 1,40,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। बेशतर यात्री गुफा में हाजिरी देने के बाद वापस अपने अपने घरों को लौट गए हैं। यात्री वादी की बेमिसाल खूबसूरती और मुनफरिद मेहमान नवाजी से काफ़ी मुतमइन हैं। दरियासना आज भगवती नगर जम्मू के बेस कैंप से 8,150 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जत्था वादी की तरफ रवाना हुआ, जिनमें से 3,445 यात्री बालतल जब के 4,750 यात्री पहलगाम के रास्ते यात्रा कर रहे हैं। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कल

0: गंगमपुर और कटरा का दौरा करके वहां तरक्याती कामों और कलीदी नौईयत के प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड अस्पताल का भी दौरा किया और वहां फर्स्ट जकलाई के एक सूबेदार की इयादत की। बाद में उन्होंने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का भी मुआयना किया और इसके काम की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के तहत मनुष्यात मुखालिफ सरगर्मियां जारी हैं और यूटी को इस बिद्दत से पाक करने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कश्मीर के इश्तराक से आईजीसी लासीपुरा पुलवामा में काफ़ी मकदार में जब्त की गई नशीली अशिया को तबाह कर दिया। यह अशिया ANTF ने मुख्तलिफ ऑपरेशनों के दौरान जब्त की थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ज़ाती तौर मनुष्यात मुखालिफ सरगर्मियों पर नजर गुजर रखे हुए हैं। पेश है मनुष्यात से लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू की सदारत में श्रीनगर में RBI की 37वीं यूटी सतह की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर में साइबर माली फ्रॉड्स और गैर मुनज़म माली सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतलिक उमूर का जायजा लिया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने इस तरह की बिदात पर काबू पाने के लिए इदारा जाती सलाहियतों को मुस्तकम करने की जरूरत पर जोर दिया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान ट्रैफिक की बेहतर निजामत को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे इकदाम नीज कलीदी सड़क प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने ट्रैफिक निजाम में बेहतरी लाने और लोगों की आवाजाही में आसानी पैदा करने के लिए बैन महकमा जादी ताउन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक में हाल रुकावटों को दूर करने के लिए तमाम प्रोजेक्टों की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जाना चाहिए। कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर की सदारत में यारीपोरा में एक ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान इलाके के लोगों ने अपने मसाइल को उजागर किया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलूफर खान ने कल यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस दिलना बारामूला में MSME पहल के तहत मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
2: आकाशवाणी श्रीनगर से आपने समाचार सुना। 12:35 हुए हैं। दर्शन अपडेट हमने आप तक पहुंचाया कि कितने भक्तों ने बाबा भोले की पवित्र गुफा में हाजिरी दी। 12 बजे तक जो हमने आंकड़ा आपके साथ साझा किया उसकी संख्या थी 13,879। 13,879 भक्तों ने अभी तक रिकॉर्ड तोड़ बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में हाजिरी देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। भक्ति संगीत जारी है, बने रहिए हमारे संग।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।

0: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
0: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहने। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
1: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
0: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
0: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The U.S. launched new airstrikes against Iran this morning. Tehran responded by targeting Bahrain, Kuwait and Qatar, escalating crossfire that again threatened an interim deal aimed at ending the war in the Persian Gulf. The strikes came hours after U.S. President Donald Trump said recent Iranian attacks on ships in the Strait of Hormuz had signaled the end of the fragile ceasefire. Today's attacks appear to be larger on both sides. Delhiites woke up to heavy rainfall and thunderstorms this morning. The rain caused waterlogging in various places, due to which traffic movement was severely affected. The IMD had issued a red color warning for moderate to heavy rain in the national capital, along with Haryana. The Delhi government has said that teams of the Delhi Jal Board, Public Works Department and the Municipal Corporation are on the ground to deal with the waterlogging situation. And with that, we end this news bulletin.
1: आपने आकाशवाणी श्रीनगर के केंद्र से दिल्ली की जहां श्रीनगर केंद्र की वसातत से दिल्ली से समाचार सुना। 1:10 हुए हैं, भजन जारी है, दर्शन अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जो ताज़ा तरीन अपडेट हम तक पहुंचा है वो है 12 बजे तक का, जिसमें 13,879 भक्तों ने बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में हाजिरी दी है और उनका दर्शन प्राप्त किया है। फिलहाल के लिए आमिर को इजाज़त दीजिए, थोड़ी ही देर में आप इस भजन के उस पार जुड़ेंगे शाहीन ऋषि के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी और निशस्त में, किसी और सभा में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।

आकाशवाणी श्रीनगर के विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 से हम आपसे मुखातिब हैं, जहां FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर मैं हूं शाही नरेशी आपकी सेवा में उपस्थित और आपकी सेवा में रहूंगी अभी से लेकर 6 बजे तक। आप इस प्रसारण को DTH के आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप और प्रसाद भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। जी हाँ, हम आपके साथ आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं ताकि आप तक पहुँचाए शरण शरण के अपडेट्स और क्या कुछ हो रहा है यात्रा मार्गों पर, वो अपडेट्स आप तक पहुँचाए और यात्री चल रहे हैं आगे क्या अपडेट है उनका, तो ये भी हम कोशिश कर रहे हैं, इसी प्रयास में रहते हैं कि आप तक वो अपडेट्स भी पहुँचाए। और कितने यात्री भगवती नगर से निकले हैं दो मार्गों के, और वो अपडेट्स भी हम दिन भर आपके साथ साझा करते रहते हैं और साथ साथ दर्शन अपडेट्स भी आपके साथ हम साझा करते रहते हैं। बस हमारा लक्ष्य यही होता है कि आप श्रोता जो है अपडेट होते रहे हमसे।

हमारे जो रिपोर्टर्स होते हैं उन वो भी आपको अपडेट करते रहते हैं। बस हम सबका लक्ष्य यही है कि हमारे यात्री जो है उनकी यात्रा सफल से हो, शांतिपूर्ण हो और सुखद में हो। जी हाँ, ये 12 बजे का अपडेट एक बार फिर, जबकि आमिर ने इस अपडेट को आपके साथ साझा किया है, तो मैं भी एक बार फिर करना चाहूँगी। ये जो है 12 बजे तक 13,879 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन किए हैं, और जिनमें पुरुषों की संख्या रही है 8,766, महिलाएं 4,722, बालक 110, साधु 113, साध्वीज 9 और सुरक्षा कर्मचारी 159। ऐसे कुल मिलाकर संख्या बनती है, आंकड़ा रहा है इसका 13,879 जो है तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाए हैं।

अपनापन और मेज़बानी का भी एक जीता जागता उदाहरण है। सदियों से कश्मीरी लोग, खासकर मुस्लिम समुदाय जो है, इस यात्रा के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये लोग यात्रा के लिए न केवल सेवा प्रदान करते हैं, बल्कि इससे कश्मीर की सांझी सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखने को मिलती है।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। श्रोतो आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक सफ़र नहीं है, बल्कि ये कश्मीर के लोगों के

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, श्रंशन के अपडेट्स के लिए हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं और कुछ क्षणों में हम आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे, पहले उर्दू, फिर अंग्रेज़ी और उसके बाद फौरन आप हिंदी में समाचार समाप्त करेंगे। बस ज़रा से इंतज़ार।

0: शाम 6:20 होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असदुल्ला। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम की सप्लाई और अहम मादनियात के मखसूस कॉरिडोर के सिलसिले में तारीखी समझौतों पर दस्तखत किए हैं। साइबर, अहम टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर ऑस्ट्रेलिया भारत शराकत दारी का आगाज हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी अल्बानीज के साथ सालाना सरबराह मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात में वसत पैदा हो रही है जो मजबूत बाहमी एतमाद पर मबनी है। कौमी राजधानी खित्ते में तेज बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने भुवनेश्वर में गहरे समुद्र में माहीगीरी के वसाइल के पायदार इस्तेमाल के लिए कौमी मिशन का आगाज किया है। कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत मुकर्रर करदा बालिगों की खानदगी हासिल करने के मामले में उत्तराखंड ने मुकम्मल खानदगी हासिल कर ली है और वियतनाम में होने वाले पिकबॉल आलमी कप 2026 के लिए भारतीय दस्ते का

0: कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मंसब एंथनी अल्बानीज़ी आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत सालाना सरबराह मुलाकात में शिरकत की, जिसके तहत वफ्द की सतह की बातचीत की गई। दोनों वज़राए आज़म ने समिट के इख्तिताम पर विक्टोरिया में गवर्नमेंट हाउस में मुश्तरका प्रेस बयान जारी किए। दोनों लीडरों ने दो तरफा ताल्लुकात में यकसर तब्दीली को एक अहम कदम करार देते हुए इसकी सताइश की। भारत बैरुल काहिल में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दोनों रहनुमाओं ने दिफा और सिक्योरिटी इश्तराक के सिलसिले में एक मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। भारत और ऑस्ट्रेलिया को दरख्शां जमहूरियतें और अहम समंदरी क़ुव्वतें करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत बहरुल काहिल सिर्फ दो समंदरों का संगम नहीं, बल्कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी एक जहीन जमहूरियतों की मुश्तरका उमंगों की अक्कासी होती है।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में मजीद वसअत पैदा हो रही है, जो गहरे बाहमी एतमाद पर मबनी है। इस समिट की एक अहम खसूसियत इक्तिसादी और तिजारती इश्तराक को रफ्तार देना है।
1: कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है।
0: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे में एक अहम इकदाम के तहत भारत को ऑस्ट्रेलिया की जानिब से यूरेनियम की सप्लाई को यकीनी बनाने के सिलसिले में एक अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत के माहौल के लिए साजगार मकासिद को एक नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि साइबर अहम टेक्नोलॉजियों और सप्लाई चेन से मुतालिक ऑस्ट्रेलिया भारत शराकतदारी और अहम मादनिया से मुतालिक एक मखसूस कॉरिडोर के आगाज के साथ ही अहम टेक्नोलॉजी और वसाइल के तहफ्फुज को भी नई बुलंदी हासिल हुई है।
1: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज सुबह दिल्ली में तेज बारिश हुई, जिसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने की खबरें आईं, जिससे ट्रैफिक मुतासिर हुआ। भारतीय मौसमियात महकमे ने हरियाणा समेत कौमी राजधानी में अवसर से शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड, अवामी कामकाज के महकमे और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमें पानी जमा होने की सूरत हाल से निमटने के लिए सरगर्म हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने आज भुवनेश्वर में उड़ीसा की जरई और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारत के गहरे समुद्र में माहीगीरी के वसाइल के पायदार इस्तेमाल की खातिर एक तारीखी कौमी पहल का आगाज किया। बहरी मईशत को कौमी खुशहाली के मामले में एक यकसर तब्दीली वाला इंजन करार देते हुए उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि विकसित भारत के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी माहीगीरी और बहरी पेशावराना खिदमात को इख्तियार करें। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: हुकूमत ने आज गहरे समंदर में माहीगीरी के वसाइल के पायदार इस्तेमाल की खातिर एक तारीखी कौमी पहल का आगाज करके बहरी शोबे की तरक्की में अहम संगे मील हासिल कर लिया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने दूर दराज समंदर में काम करने वाले माहीगीरी के भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों के लिए इजाजत नामों के कौमी सतह पर नफाज का इफ्तिताह किया। उन्होंने एक इंतहाई अहम डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज भी जारी की। उन्होंने नौजवान भारतीयों से अपील की कि वो माही परवरी को जदीद साइंस पर मबनी पेशे के तौर पर अपनाएं, जहां आलमी सतह पर रोजगार के मौके मौजूद हैं। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: उत्तराखंड कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और UELLAS माशरे में ताहयात सीखने की तफहीम यानी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत बालिगों की खानदगी के मुकर्रर मेयारात को पूरा करने के बाद मुल्क की छठी मुकम्मल तौर पर खानदा रियासत बन गई है। हुकूमत हिंद की वजारत तालीम की स्कूली तालीम और खानदगी के महकमे की तरफ से तय करदा खानदगी के मेयारात को पूरा करने के बाद गवर्नर की जानिब से 8 जुलाई 2026 को इस ऐलान की मंजूरी दी गई। हुकूमत ने ज़रात में मशीनों के इस्तेमाल से मुतालिक ज़ेली मिशन के तहत मुल्क भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मालियत की तकरीबन 22 लाख ज़रई मशीनें फराहम करने की हिमायत की है। ये मिशन ज़रात में मशीनों के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए साल 2014-15 में शुरू किया गया था, जो मुल्क में ज़रई पैदावारियत को बढ़ाने के सिलसिले में इंतहाई अहम रोल अदा करती हैं। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP को उसके योम तासीस के मौके पर तमाम तलबा को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि मुल्क मुकद्दम जज्बे के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुज़श्ता कई दहाइयों से मुल्क की खिदमत, रहनुमाई और समाजी जिम्मेदारियों की तरफ रागिब करती आ रही है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि इस तंजीम ने कौम परस्ताना नजरियात, भारतीय सकाफत, कौमी यकजहती और समाजी शऊर को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर दिफा ने यह यकीन भी जाहिर किया कि यह तंजीम तलबा की फलाह व बहबूद और कौमी मफाद के लिए नई तवानाई और जोश व जज्बे के साथ आइंदा भी अपना शानदार सफर जारी रखेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी वर्करों को उसके योम तासीस पर मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के नजरियात पर चलते हुए तंजीम तलबा की कुव्वत को मुनज्जम करने और नौजवानों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाने का अहम काम कर रही है। भारत की ब्रिक्स 2026 की जेर सदारत तीसरे ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वज़रा की मीटिंग के मौके पर आज नागपुर में ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आगाज हो गया है। वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के बाद मीडिया के अफराद से बातचीत करते हुए ट्रांसपोर्ट के मरकजी सेक्रेटरी वी उमाशंकर ने कहा कि सीनियर अहदेदारान ने मोबिलिटी, शहरी बुनियादी ढांचे, पायदार तरक्की जैसे अहम मामलों पर तबादले ख्याल किया। भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन ने पिकल बॉल आलमी कप 2026 के लिए भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया है। पिकल बॉल आलमी कप 2026 का इनेकाद वियतनाम के दानंग में 30 अगस्त से 6 सितंबर तक किया जाएगा। हर्ष मेहता टीम की कमान संभालेंगे। टीम में अर्जुन सिंह भी शामिल हैं, जो आलमी कप में अंडर 18 जुमरे में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम की सप्लाई और अहम मादनियात के मखसूस कॉरिडोर के सिलसिले में तारीखी समझौतों पर दस्तखत किए हैं। साइबर, अहम टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर ऑस्ट्रेलिया भारत शराकतदारी का आगाज हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी अल्बानीज के साथ सालाना सरबराह मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात में वसत पैदा हो रही है, जो मजबूत बाहमी एतमाद पर मबनी है। कौमी राजधानी खत्ते में तेज बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासर हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में गहरे समुद्र में माहीगीरों के वसाइल के पायदार इस्तेमाल के लिए कौमी मिशन का आगाज किया है। कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत मुकर्रर करदा बालिगों की खानदगी हासिल करने के मामले में उत्तराखंड ने मुकम्मल खानदगी हासिल कर ली है। और इसी के साथ ये खबरें खत्म हुई।

0: Narendra Modi holds annual summit with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne. Says bilateral relationship entered an expansive era anchored in deep mutual trust. Vice President C.P. Radhakrishnan unveils national mission for sustainable use of high seas fishery resources in Bhubaneswar. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मानसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
2: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
3: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
2: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
3: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
3: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप क्लीन एनर्जी

0: जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
1: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
0: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: And critical minerals.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
5: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
4: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत के हिमालय

क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञ

को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड

0: बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले कुछ दिनों की बात करें, सबसे पहले एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो एनसीआर दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान है। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज सख्त मनाही है और ऐसा किए बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहाँ का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन .com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।
4: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.8 1 MHz पर। DTH की आराधना सर्विस ने वज़ ऑन एयर के मोबाइल ऐप और प्रसाद भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम दस्तियाब है। जी हाँ, श्रृंखला के अपडेट्स लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं बराबर प्रातः 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। 1 बजे का अपडेट डेट आपको दे दें। जी हाँ, 1 बजे तक जो हमारे पास अपडेट आया है, 1 बजे तक 16,948 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। संख्या की बात करें तो पुरुष की संख्या रही है 10,361, महिलाएं 6,152, बालक 127, साधु 125, साध्वी 9 और सुरक्षा कर्मचारी 174। ऐसे कुल आंकड़ा जो है रहा है 16,948 बाबा के भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें, जहां पर हम आपको अपडेट कराते रहते हैं, हमारा यही प्रयास होता है कि आपको अपडेट दे यात्रा के हवाले से, यात्रीज के हवाले से, ताकि आपको भी पता चले कि कहां किस मार्ग पे क्या हो रहा है, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है कहां पे क्या हो रहा है। तो जहां हम ये

भी लौट रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा के लिए आरपीएफ के जवान 24 घंटे तैनात है। वॉर रूम में सीसीटीवी कैमरा से हर गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। ट्रेनों की आवाजाही और समय पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यदि कोई ट्रेन लौटे तो उसकी जानकारी तुरंत अनाउंसमेंट सिस्टम से दी जाती है। स्टेशन पर हेल्प डेस्क और सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं यात्री संबंधी हर जानकारी और मार्गदर्शन किया जा रहा है। स्टेशन पर पहुंचे श्रद्धालु प्रशासन की ओर से की गई उचित व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं, जिससे बाबा बर्फानी के दर्शन बेहतर माहौल में हो रहे हैं। वहीं जिला पुलिस लाइन में बुधवार को समीक्षा बैठक हुई। एसएसपी जोगेंद्र सिंह ने अमरनाथ यात्रा के चलते सुरक्षा पुख्ता बनाए रखने और कानून व्यवस्था की प्रभावी इंतजाम पर विशेष जोर दिया। बैठक में भी जोनल सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसी तरह से प्रशासन के अधिकारी भी लगभग हर स्थल पर श्री अमरनाथ यात्रा की समीक्षा करते हैं, ताकि तीर्थ यात्रा को बेहतर बनाया जा सके। याद रहे कि आज भी श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा पर बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 8,150 रही, जहां बालटाल मार्ग से 3,445 तीर्थयात्री रवाना कर दिए गए। वहीं प्राचीन मार्ग पहलगाम से 4,705 तीर्थयात्रियों को रवाना कर दिया गया। इस तरह से ये यात्रा सुखद और संतुष्ट तरीके से लगातार जारी है और श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर जहां एक तरफ घाटी की ओर रवाना हो रहे हैं, वहीं बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट रहे तीर्थयात्री भी प्रसन्नता के साथ अपने घरों को वापस सही सलामत पहुंच रहे हैं।

0: हासिल करने के बाद पैदल घोड़ों पे सवार पिट्ठू और डांडी में सवार होके गुफा की तरफ रवाना हुए। तो बम बम बोले हर हर महादेव का पवित्र नाद करते हुए जोश जज्बे के साथ जो यात्री पवित्र गुफा की तरफ दर्शन के लिए रवाना हुए उनमें 9,946 पुरुष, 2,172 महिलाएं, 172 बालक बालिका, 51 साधु, 30 साधिया, 5 ट्रांसजेंडर एवं 236 सुरक्षा कर्मी भी थे। और कठिन रास्ते जो है वो पार करके वो गुफा की तरफ रवाना हुए। इस दौरान 1,725 यात्री जो है वो दर्शन कर शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे। इन यात्रियों में 1,320 पुरुष, 330 महिलाएं, 18 बालक बालिका, 10 साधु, 2 साधिया एवं 45 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार भी थे। और ये यात्री जो शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे तो वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे, क्योंकि प्रशासन के द्वारा यात्रियों को गुफा तक पहुंचाने और सुरक्षित वापस लाने के लिए जिस तरह व्यवस्थाएं की गई हैं उसको लेकर श्रद्धालु संतुष्ट थे। और उन्होंने इत्मीनान का इजहार करते हुए आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष यात्रा रूट के हर पड़ाव पर जिला प्रशासन गांधरबल ने यात्रियों के लिए जगह जगह उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं और इसके साथ साथ जो सुरक्षा के प्रबंध है सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा के दौरान किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और इस हवाले से हम श्रोताओं को ये भी बताना चाहते हैं कि ट्रांजिट कैंप मनगाम या ट्रांजिट कैंप शादीपुरा में जो यात्री बीती रात 10 बजे तक पहुंचे हैं उन यात्रियों को रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह सवेरे बालतल बेस कैंप और भगवती नगर बेस कैंप जम्मू की तरफ कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना कर दिया गया। और जो यात्री रात भर बालतल बेस कैंप में कायम पजित थे तो और उन यात्रियों को भी रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह सवेरे मुख्तलिफ वाहनों में जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की तरफ रवाना कर दिया गया। इतलात के मुताबिक उन वाहन जो गाड़ियों में सवार जो थे यात्री उन्होंने नवयुग टनल क्रॉस किया है और वो अपना सफर आगे जारी रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो यात्री आज सुबह सवेरे यहां से निकले हैं वो भी बालतल पहुंचे हैं। और इस हवाले से और हम जानकारी देना चाहते हैं, सूचना देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को कि जो यात्री आज सुबह सवेरे भगवती नगर बेस कैंप से घाटी की ओर निकले हैं और वो घाटी आगमन होते ही उन्हें पवित्र गुफा यानी बालतल बेस कैंप की तरफ रवाना कर दिया गया और वो भी बेस कैंप बालतल पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल मुख्य मार्ग से खुश असलूबी से जारी है और हम आशा करते हैं कि ये तीर्थ यात्रा सफल हो जाए। जी ना
1: जी, बहुत खूब आपने ये भी कहा कि इस वक्त जो है हल्की फुल्की बारिशें भी बीच बीच में होती रहती हैं, वर्षा होती रहती है, तो इस वजह से हमारे तीर्थयात्री जो है ये श्रद्धालु जो है इस मौसम का भरपूर आनंद लेते होंगे।
0: बिल्कुल, वो इस मौसम का आनंद लेते हैं। ये मामूल रहा है बालतल से पवित्र गुफा तक बीच में जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उस वक्त हल्की सी वर्षा भी होती है और इससे मौसम जो है बिल्कुल खुशगवार होता है और इस खुशगवार मौसम का आनंद लेते हुए जो श्रद्धालु जो है पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो रहे हैं और जो वहां पहुंचे हैं सुबह सवेरे उन्होंने भी गुफा पे माथा टेका, शिवलिंगम का दर्शन किया और सुरक्षित वो वापस बालतल बेस कैंप की तरफ आ रहे हैं।
1: और रिजवान साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो है भारी भीड़ है हमारे श्रद्धालुओं की, बहुत मात्रा में आ रहे हैं, तो क्या ऐसे भी हमारे कुछ श्रद्धालु हैं जो पंजीकरण के बगैर वहां पे पहुंचते हैं?
0: पहले पहल बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो पंजीकरण के बगैर ही बालतल बेस कैंप पहुंचे हैं जिसमें कि 22 बालतल में एक क्योस जैसा माहौल पैदा हुआ है क्योंकि जो जिला प्रशासन है वहां जो जिला अफसरान ड्यूटी पे तैनात है उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा लेकिन बाद में बाजाबता तौर जम्मू कश्मीर के जो सरकार है उन्होंने भी इस हवाले से एक सर्कुलर निकाला है और लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने इस बाजाबता वो सर्कुलर निकाला है जिस आ गया है कि पंजीकरण किए बगैर कोई भी यात्री घाटी आगमन न हो जाए क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे। तो उसके बाद बाजाबता तौर जो यात्री आ रहे हैं वो पंजीकरण करके ही आ रहे हैं और साथ ही जो बिना पंजीकरण के बगैर ही यहाँ पहुंचे हैं उन्हें बाजाबता तौर बेस कैंप जो ट्रांजिट कैंप शादीपुरा

0: ट्रांजिट का मनी काम जो है वहीं पे रोक दिया जाता है और उनसे केवाईसी जो हासिल किए जाते
1: जी
0: हैं तो
1: जी
0: ताकि
1: जी
0: उनकी पंजीकरण मौके पर ही किया जाए। लेकिन बार बार जिला प्रशासन हो या सूबा इंतजामिया हो या सरकार की जानिब से श्रद्धालुओं को ये सूचना दी जाती है कि पंजीकरण के बगैर वो घाटी ना आए, घाटी वारिद ना हुए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स होती है। और श्री सालाने अमरनाथ जी यात्रा जो बड़ी खुश असलूबी से जारी है इसमें अड़चने डालते हैं, तो
1: जी जी
0: अड़चने पैदा होती है जिससे लोगों को मुश्किल होता है। वहाँ खासकर जो हमारे अधिकारी मुख्तलिफ विभागों के अधिकारी वहाँ पे तैनात है उन्हें जबरदस्त मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन अच्छे तरीके से उन्होंने इस पूरे माहौल को टैकल किया है।
1: जी जी
0: और जो भी यात्री वहाँ पहुंचे हैं उन्हें बाबा बर्फानी गुफा की तरफ दर्शन के लिए रवाना कर दिया गया।
1: जी रिजवान साहब, आपका इस विवरण के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका।
1: श्रोताओं, ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता गांदरबल बालताल से रहीम रिजवान, जिन्होंने ये बताया कि ये यात्रा जो है बालताल के मार्ग से बहुत ही अच्छी तरह से जो है शांतिपूर्ण तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीचों बीच जारी है। और साथ साथ ये भी कहा कि हल्की वर्षा से जो है मौसम और सुहाना हो जाता है और हमारे यात्री ऐसे मौसम का आनंद लेते हुए बाबा भोलेनाथ के नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी यात्रा को पूरी श्रद्धा के साथ पूर्ण करते हैं।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग, और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। हमारा लक्ष्य यही होता है आपको अपडेट कराते रहे, और हमारे साथ साथ हमारे संवाददाता भी इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। तो अभी फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एस तारिक पहलगाम से। जी तारिक।
1: हाँ जी साईं, अभी भगवान शिवा की भक्तों की पवित्र यात्रा सफलता और कष्टा के साथ निरंतर जारी है। सुबह 4 बजे उन्होंने आधार शेवर और निजी अवसरों से निकलकर श्रद्धालु चंदनवारी से आगे पड़ाव शिशनागौर पंचतरनी पहुंच गए।

0: श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में, और इसमें हम हमारे संवाददाताओं से जुड़ते हैं और आप तक क्षण क्षण की जानकारी जो है पहुंचाते हैं। और इस वक्त हमारे एक और संवाददाता फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं मोहम्मद तस्कीन बानिहाल से, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग से। तो आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं इनके पास। जी तस्कीन साहब।
1: जी शुक्रिया। अपडेट्स अब तक के यही है, ये जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आज जो यात्रा के दोनों ग्रुप्स जो कश्मीर से जम्मू, जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू वापस जा रहे हैं दर्शन के बाद, तो वो अभी जो रामबन डिस्ट्रिक्ट का और उधमपुर का एरिया इसे क्रॉस कर चुके हैं। जो पहलगाम की आज सुबह जो यात्रा थी और बालतल के, तो वो करीबन 11 बजे तक उन्होंने बानिहाल काजीगुंड टनल क्रॉस किया और वो बालतल और पहलगाम के रास्ते मतलब छोड़ दिए गए, रवाना किए गए। इसी तरह जो वापस जो बालतल और पहलगाम से दर्शन के बाद, पवित्र गुफा के दर्शन के बाद श्री अमरनाथ यात्री जो वापस आ रहे थे, तो उनकी गाड़ियां भी एक तो जो पहलगाम वाला ये थोड़ा पहले ही निकलता और जल्दी पहुंच जाता तो ये करीबन जम्मू पहुंचने वाला है इस वक्त, जबकि बालतल का जो ट्रैफिक कवरे आखिर से निकलता है, दूर है इनकी मंजिल, तो ये भी इस वक्त जो जम्मू की तरफ बढ़ रहे हैं, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से गुजर कर जम्मू की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक जो अगर पिछले 8 दिनों से कहेंगे जो पुलिस हुकाम का कहना है कि जो अभी तक जो भगवती नगर के बेस कैंप से जो रवाना यात्री किए गए पिछले 8 बैच में, उनकी तैदाद अब 52,816 पहुंच गई है। जो यहां से जो हमारे काफिले जाते हैं जिनकी हम रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनका अब तक ये 52,816 पहुंच चुका है। जो फिगर्स हैं वो अब तक कश्मीर की तरफ रवाना किए गए यात्रा बेस कैंप भगवती नगर जम्मू से। इस दौरान जो पुलिस का जो एसआर है वो जो ईमानदारी और इंसानियत की मिसाल, तो उसका एक और एक आज मिसालें सामने आई। दो मोबाइल फोन गिरे, तो बेशकीमती मोबाइल फोन है जो यहाँ बानिहाल के यात्रा ग्राउंड में लावारिस हालत में पाए गए थे, तो उन्हें वहां पर जो पुलिस के हुकाम वहां पर मौजूद हैं उन्होंने उन्हें उठाया और बाद में उन्हें जो उनके हकीकी वारसीन थे उनके हवाले किया गया। इस दौरान जो मौसम अगर कहेंगे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कल हल्की हल्की बारिश देर तक हुई, तो उसकी वजह से जो मौसम आज भी बहुत खूबसूरत सुहाना बना हुआ है और जो धूप और जो छाव का सिलसिला आज दिन भर सुबह से ही जारी है इस वक्त तक, और हवाएं चल रही जिसकी वजह से इस पूरे सेक्टर में मौसम जो है बहुत खुशगवार बना हुआ है। पिछले कई रोज से अगर कहेंगे तो मजमू तौर पर मौसमी जो सूरत हाल है बहुत मेहरबान रही, बारिशें भी हुई। हालांकि कल बहुत तेज बारिशें हुई दिन के अवकात में, मतलब दोपहर के बाद रामद और चंद्रकूट के इलाके में, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और ट्रैफिक जो है यात्रा उस वक्त निकल गई थी, लेकिन बाद में जो बाकी ट्रैफिक था जो जम्मू और श्रीनगर से रिलीज किया जाता है यात्रा के निकलने के बाद, तो उसको कोई दुश्वारी या कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा और दोनों तरफ का ट्रैफिक जो है वो मुसलसल और अभी तक बगैर किसी खलल के आगे बढ़ रहा है।
0: जी तस्कीन साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विवरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता बानिहाल से, राष्ट्रीय राजमार्ग से, जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी जानकारी जो पहुंचाई, और साथ ही ये भी बताया कि मौसम जो है वहां पर भी बहुत सुहाना है, और ये भी कहा कि जहां हमारे यात्री जो है वो इस पवित्र यात्रा के लिए आ रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ, वही घर वापसी भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरह से जो है जारी है।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।
2: जय बाबा बर्फानी।
3: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग, और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। जी हाँ, आज प्रातः जो है आठवां जत्था जम्मू बेस कैंप भगवती नगर से रवाना कर दिया गया घाटी की ओर, और कुल संख्या की बात करें 8,150 तीर्थ यात्रियों को छोटे बड़े वाहनों में यानी 334 छोटे बड़े वाहनों में रवाना कर दिया गया। दो मार्गों से रवाना कर दिया गया, एक बालतल का मार्ग, बालतल के मार्ग से 3,445 तीर्थ यात्रियों को 168 छोटे बड़े वाहनों में रवाना कर दिया गया, और पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 4,705 तीर्थ यात्रियों को 167 छोटे बड़े वाहनों में रवाना कर दिया गया है घाटी की ओर। जी हाँ साइका
4: जी, शाहिन जी, बिल्कुल आपने कहा, जैसा कि आपने अभी कहा कि दोनों मार्गों से जो है आज आठवां जत्था जो है रवाना कर दिया गया वादी की ओर, और जिनमें पहलगाम के प्राचीन मार्ग की अगर बात करें तो जैसा कि आपने बताया भी कि 4,705 तीर्थ यात्रियों को 167
3: छोटे बड़े वाहनों में,
4: माफ कीजिए, 166 छोटे बड़े वाहनों में रवाना कर दिया, और जिनमें पुरुषों की संख्या 3,293, महिलाएं 1,115, बालक 2, साधु 238, साध्वी 57, यूं कुल मिलाकर ये आंकड़ा 4,705 बन जाता है। और वही बालतल के मार्ग की बात करें तो वहाँ से जो है 3,445 तीर्थयात्रियों को 168 छोटे बड़े वाहनों में रवाना कर दिया गया है, जिनमें पुरुषों की संख्या 2,370, महिलाएं 845, बालक 13, साधु 194, साध्वी 20 और ट्रांसजेंडर 3 भी इसमें शामिल है, जो कुल मिलाकर ये संख्या जो है बन जाती है 3,445।
3: जी हाँ, कुल आंकड़े की बात करें तो 8,150 तीर्थ यात्रियों को आज भगवती नगर से घाटी की ओर रवाना कर दिया गया। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अभी तक की जो रिपोर्ट हमारे पास आई है, दो बजे तक 20,114 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए हैं। दो बजे की हम आपको रिपोर्ट बताते हैं, 20,114 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। पुरुषों की संख्या की बात करें 12,131, महिलाएं 7,492, बालक 145, साधु 139, साध्वी 13 और ट्रांसजेंडर की कोई नहीं जी, और सिक्योरिटी फोर्सेस का सुरक्षा कर्मचारी की बात करें तो 1,094, ऐसे आंकड़ा बढ़ा है।

0: आज 2 बजे तक तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाए हैं। 20,114 रहा है।
1: और शाहिन जी, हमारे लिए ये प्रसन्नता की बात भी है कि सिर्फ पहले ही हफ्ते में 1,40,000 का आंकड़ा जो है,
0: बिल्कुल ये रिकॉर्ड तोड़ हम कह सकते हैं अभी तक का जो है आंकड़ा हमारे पास है, अभी अपडेट है 2 बजे तक, तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। ऐसे अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। हम बार बार यही कहेंगे, हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, और हमारा यही कार्य रहता है आपको अपडेट करें, और हमारे साथ साथ हमारे संवाददाता जो है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है, उनका भी यही कार्य होता है आपको अपडेट करें। तो अभी हमारी फ़ोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे श्रीनगर ट्रांजिट कैंप से इमरान नायको जी। इमरान
1: जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे कि पहले दिन से हम बता रहे हैं कि सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज के साथ ही श्रीनगर शहर में यात्री जो है पांथा चौक ट्रांजिट कैंप पहुंच रहे हैं, और यहाँ पांथा चौक के ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ जी यात्रियों के लिए जो यहाँ सुविधा रखी गई है, अरेंजमेंट्स किए गए हैं, उसको लेके हम मुसलसल यात्रियों से बात करें। और जहाँ तक आज की दिन का ताल्लुक है, आज भी अमरनाथ जी यात्री यहाँ पहुंचे हैं, और यहाँ से जो कल शाम को यात्री पहुंचे थे और उन्हें पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया है दोनों रूट्स की जानिब। और इस सिलसिले में जो यात्री यहाँ पे रुकते हैं, जो यहाँ पे नाइट स्टे करते हैं, उनके लिए खाने पीने की सुविधाएं रखी गई है, लंगर्स का इंतजाम किया गया है, कम्युनिटी किचन यहाँ पे कायम किया गया है, और साथ साथ यहाँ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, और हर तरह की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो यहाँ अमरनाथ जी यात्रियों के लिए इस ट्रांजिट कैंप में रखी गई है। और इसके अलावा यहाँ देख रहे हैं हम कि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि पुलिस के साथ साथ जो सिविल डिपार्टमेंट्स के जो एहलकार है वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं ताकि अमरनाथ जी यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यात्रियों का पहले दिन से ही बड़े ही पुरजोश अंदाज से उनका इस्तकबाल किया जाता है, और हर साल की तरह इस साल भी हमने देखा कि यात्री हर गुजरते दिन के साथ जो नया जत्था यहाँ पे पहुँचता है तो किस तरीके से उनका इस ट्रांजिट कैंप के मेन गेट पे ही पुरजोश इस्तकबाल किया जाता है, वेलकम किस अंदाज से किया जाता है। और मुसलसल यात्रियों से भी हमारी पहले दिन से बात है हो रही है, और इवन आज भी कई सारे यात्रियों से अभी हमारी बात हुई, और हम बार बार उनसे इसी यही पूछते हैं कि अमरनाथ जी यात्रा को लेके जो अरेंजमेंट किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर उनका क्या फीडबैक है, यहाँ के मकामी लोगों का यात्रा को लेके जो व्यवहार है, जो आप उनसे मिलते हैं तो उसका फीडबैक जानने की कोशिश करते हैं। एज सच सभी यात्री जो है वो इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस, आर्मी, CRPF, ITBP, ट्रैफिक पुलिस या जितनी भी सिक्योरिटी यहाँ पे इदारे हैं, या फिर हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, या श्राइन बोर्ड हमारा जो है, जितना भी अमला यहाँ तैनात हुआ है, तो उनकी वो जो है तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और साथ साथ जैसे कल भी हमने कहा था कि श्रीनगर के HMT इलाके में जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर एस्टैब्लिश किया गया है, और इस कमांड और कंट्रोल सेंटर से पूरी यात्रा को मॉनिटर किया जा रहा है, और हर एक डिपार्टमेंट का महकमे का जो ऑफिशियल है वो यहाँ तैनात है, और पूरी यात्रा को यहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है ताकि किसी यात्री को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इनकेस अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम या दिक्कत हो भी जाती है तो इमीडिएटली या विद इन नो टाइम जो है कोऑर्डिनेशन के बाद उस यात्री की जो खिदमत है वो अंजाम दी जाती है। सो कुल मिला के हम देख रहे हैं आज भी यहाँ शहर में मौसम साजगार है, सुहाना है, और सुहाने मौसम के बीच में यहाँ यात्री पहुंचे हैं। कुछ लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ लोग वहीं से रजिस्टर्ड यात्रीज हैं, और लेकिन साथ साथ यात्रियों से जो गवर्नमेंट ने पिछले 4-5 दिन से लगातार अपील भी की है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस से, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स है, जो एडवाइजरी है, वो यात्री जो है उसको फॉलो करें ताकि किसी किस्म की उन्हें दिक्कत या मैनेजमेंट का कोई जो है प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि यात्री भी अभी कॉपरेट कर रहे हैं इसको लेके, सो सारी चीज़ें जो है बड़ी खुशुसूबी के साथ जारी। और जहां तक श्रीनगर में ट्रांजिट कैंप का ताल्लुक है तो यहां बेहतर से बेहतर जो फैसिलिटीज, जो सहूलियात है यात्रियों के लिए रखी गई, और सिर्फ ये हमारे अल्फाज नहीं है बल्कि ये उन लोगों के अल्फाज है जो अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा के दर्शन के लिए यहां पे पहुंच रहे हैं। कुछ यात्री दर्शन करके आए, उनके ख्याल, और जो यात्री पहली बार आ रहे हैं या पिछले कई सालों से आ रहे हैं, ये उन लोगों के ख्याल है, उन श्रोद्राओं, इन डिवोटीज के ख्याल है कि यात्रा को लेके किस तरीके के वो खुश रश है और किस तरीके के अरेंजमेंट्स है और किस तरीके का यहाँ पे माहौल है। और आज भी इस साजगार माहौल में जहाँ धूप खिली हुई है, ठंडी हवाएं भी चल रही है और यात्रियों को पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया।
0: जी इमरान, यहाँ पे लंगर की बात करते हैं थोड़ी सी, के लंगर में जो भी बन रहा है या पौष्टिक भोजन के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, तो हमारे यात्री खुश है, संतुष्ट हैं उस भोजन से जो अरेंजमेंट्स हैं, मतलब भोजन के हवाले से वैरायटीज मिल रही होगी उनको?
1: जी ऑब्वियसली, जैसे हम देखते हैं कि हर साल जो है जो भोजन के लिए या जिसे हम अक्सर लंच टाइम कहते हैं या डिनर शाम को जो होता है, तो मुख्तलिफ जो खाने पीने की चीजें जो है वो लंगर्स में रखी गई है। और अच्छी बात यह है कि वॉलंटियर्स जो है जो मुख्तलिफ देश के हिस्सों से आए हैं, जिन्होंने अपने लंगर्स जो है यहाँ पे रखे और फ्री ऑफ कॉस्ट जो लंगर रखे, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ उन्हें फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि इस यात्रा की यही खूबसूरती है कि यहाँ हर एक शख्स जो है वो इसमें अपना हाथ बटाना चाहता है और इसलिए यहाँ लंगर्स का भी अहतमाम है और उसमें मुख्तलिफ जो अशिया है, जो खाने पीने की चीजें हैं, वो यात्रियों को जो है दी जा रही है।
0: इमरान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप बांथा चौक से इमरान नाइको।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। जी हाँ, FM बालतल 103.7 MHz पर और FM पहलगाम 100.1 MHz पर DTH की आराधना सर्विस एवं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर के आराधना चैनल पर भी हम उपस्थित रहते हैं आपकी सेवा में, और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में दिन भर रहते हैं। तो 3 बजे तक जो हमारे पास अपडेट आया है वो आपके साथ साझा करते हैं। 3 बजे तक 22,011 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। पुरुष 13,129, महिलाएं 8,299, बालक 190, साधु 149, साध्वी 15 और सुरक्षा कर्मचारी 229। ऐसा कुल आंकड़ा रहा है 22,011 तीर्थ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त किए हैं। जी साइका
1: जी, शाहिन जी, बिल्कुल आपने कहा कि अभी जो है 3 बजे तक कुल मिलाकर 22,011 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोले के दर्शन किए हैं। वही हम अपने श्रोताओं से जो है अनुरोध करना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस की एडवाइजरी जो है उनके मुताबिक श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की है। जिन यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उन्हें श्रीनगर की तरफ आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी रजिस्टर्ड यात्री और टूरिस्ट जो श्रीनगर जा रहे हैं अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप और होटल बुकिंग रिसिट जो है हमेशा साथ रखें अपने साथ, ताकि पुलिस चेक पॉइंट्स पर वेरिफिकेशन के लिए वो दिखा सकें।
0: जी, ये भी यहाँ पे साझा करना चाहेंगे अपने श्रोताओं के साथ, ये चेकिंग जो है यात्रा को सुविधाजनक बनाने, सुरक्षा बनाए रखने और ट्रैफिक को सही तरीके से मैनेज करने के लिए की जा रही है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध

0: है कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं साथ रखें और चेक पॉइंट्स पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज के दिए गए निर्देशों का पालन करें। जम्मू कश्मीर पुलिस सभी यात्रियों और टूरिस्ट से अपील करती है कि वे अपनी यात्रा की पहले से ही सही प्लानिंग करें और एक सुरक्षित, शांत और बिना किसी परेशानी के श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के लिए पूरा सहयोग करें।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: जय शंकर महाराज। एंड नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले शंकर आपके जीवन में खुशियां दे, स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे। आने वाला साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। एंड हाँ, आप लोगों से सिर्फ ये विनती रहेगी कि गाने को पूरा देखे, शुरू से लेकर एंड तक। एंड मेरे लिए नहीं देखना तो भोले शंकर के लिए जरूर देखना, गाना पूरा देखना। एंड अगर आपका दिल करेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट।
1: भाई जा कहाँ रहा है?
0: पता नहीं, तू जा, ख्याल रखना अपना।

0: अरे भाई कहाँ जा रहे हो?
1: मंदिर जा रहा हूँ।
0: मंदिर तो बंद है, मंदिर पूरे एक साल बाद खुलेगा।

एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर डीटीएच की आराधना सर्विस एवं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर के आराधना चैनल पर भी हम उपस्थित हैं और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी की यात्रा सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की भी यात्रा है। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हिमालय की कठिन वादियों का सफर तय करते हैं। ऐसे में प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि हर यात्री अपनी यात्रा जो है सुरक्षित, स्वस्थ और सुखद तरीके से पूरी कर सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के लिए इस वर्ष व्यापक सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रा मार्ग पर अच्छी सुरक्षा प्रणाली और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है ताकि हर श्रद्धालु जो है निश्चिंत होकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। जी हाँ, ये पवित्र यात्रा जो चल रही है तो हम यूँ कहेंगे कि यात्रा दोनों मार्गों से जारी है और यात्री जो है बहुत ही सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जो भी प्रशासन द्वारा सुविधाएं हैं यात्री उन सुविधाओं का लाभ उठाकर आगे बढ़ रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच सुचारू रूप से यात्रा जारी है।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आप समाप्त कर रहे हैं मेरे यानी शाहीन ऋषि के साथ, और मेरे साथ हैं सायका सलीम। तो इस प्रसारण में हम आपकी सेवा में रहते हैं। प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक हम यात्रियों की अभी बात कर रहे थे। इस भजन से पहले तो आगे यही कहना चाहेंगे कि यात्रा की सुरक्षा में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्सेस, अन्य सुरक्षा एजेंसीज और स्थानीय प्रशासन मिलकर एक बेहतरीन यात्रा की कोशिश में है। पूरे यात्रा मार्ग पर चेक पॉइंट्स, नाके, सर्विलेंस पॉइंट्स और क्विक रेस्पॉन्स टीम्स तैनात हैं। आधुनिक कैमराज, सीसीटीवी कैमराज, ड्रोन्स और अन्य तकनीकी साधनों के माध्यम से भी पूरे यात्रा मार्ग पर नज़र रखी जा रही है। तो अभी कुछ ही देर पहले हमारे जो संवाददाता एस तारिक ने हमसे यही बात भी साझा की कि अगर ड्रोन्स या कैमराज जहाँ पे लगे हैं, यानी कि हर एक जगह पर यात्रा मार्ग जो है हर एक जगह पर कैमराज, सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, और इस बीच अगर कोई भी यात्री जो है अपना कुछ भी सामान भूल जाता है या अचानक से गिर जाता है, तो उनकी मदद से ऑनलाइन जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग करके उनको वापस दिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यात्री इसके सहूलियत के लिए ये सभी सुविधाएं हैं जो कराई जाएगी या करा रहे हैं या करा दी गई हैं। तो हर मुख्य पड़ाव पर सुरक्षा कर्मचारी जो हैं केवल ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, वे सेवा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यदि किसी यात्री को सहायता की आवश्यकता हो या रास्ता पूछना हो या किसी प्रकार की परेशानी हो, तो सुरक्षा कर्मचारी तुरंत मदद के लिए उपस्थित रहते हैं। और भी यात्रा के हवाले से बात करेंगे, पहले सुनते हैं ये भजन।

जहाँ श्रोताओं आप बने हुए हैं विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के संग। तो यात्रा की बात हो रही है, यात्री की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये आपके साथ साझा करना चाहेंगे, यात्रा के दौरान हर रजिस्टर्ड यात्री के लिए RFID कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कार्ड के माध्यम से यात्रा की मॉनिटरिंग और इमरजेंसी रेस्पॉन्स को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। यात्रियों को अनुरोध है कि वो अपना RFID हमेशा अपने साथ रखें और किसी भी चेकिंग पॉइंट पर ज़रूरत पड़ने पर उसे दिखाएं। हिमालय की ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन का सितार मैदानों की तुलना में कम होता है, इसीलिए शरीर को धीरे धीरे उस वातावरण को अनुकूल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस वर्ष जो है विभिन्न स्थानों पर मेडिकल कैंप और इमरजेंसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की व्यवस्था की है। बालतल बेस कैंप, पहलगाम बेस कैंप, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी और अन्य महत्वपूर्ण पड़ाव पर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल टीम्स 24 घंटे सेवा में तैनात रहते हैं। यहाँ ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, पल्स रेट्स और अन्य जो सेहत के लिए जांच है वो कराई जाती है, सुविधा उसके लिए उपलब्ध रहती है। इसके अलावा इमरजेंसी और मेडिकल इमरजेंसी और जो भी चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। यदि किसी यात्री को ऊंचाई की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो या चक्कर आए या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़े तो वो ट्रेन्ड मेडिकल टीम्स तुरंत उपचार पर ध्यान करती है। गंभीर स्थिति में एम्बुलेंस सेवा होने पर उच्च स्तर की मेडिकल सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। यात्रा के दौरान डॉक्टरों के बहुत महत्वपूर्ण सलाह ये होती है, अपने शरीर की बात सुने। यदि अधिक थकान महसूस हो, सांस फूल रही हो, सीने में दर्द हो या लगातार चक्कर आ रहे हो तो देरी किए बिना नज़दीकी मेडिकल कैंप से संपर्क कीजिए। यात्रा में जल्दबाजी कभी भी उचित नहीं। याद रखें, बाबा बर्फानी के दर्शन तभी सुखद होंगे जब आप सेहतमंद होंगे, स्वस्थ रहेंगे।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग। और अभी 4 बजे तक अगर आप से हम कहें कि कुल मिलाकर 25,085 बाबा भोले के हम श्रद्धालुओं ने जो है बाबा भोले के दर्शन किए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 14,954, महिलाएं 9,451, बालक 240, साधु 164, साध्वी 20 और सुरक्षा कर्मचारी 256। यूँ कुल मिलाकर ये पूरी संख्या जो है हो जाती है 25,085, जिन्होंने 4 बजे तक बाबा भोले के द्वार पर माथा टेका, दर्शन किए हैं। साथ ही साथ आपको श्रोताओं ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप कोई अपना विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9596990954, 9596990954। और इसके अलावा टोल फ्री नंबर्स भी हैं जम्मू और श्रीनगर के लिए। और श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर के लिए 1800-1807199, 1800-1807199, और जम्मू के लिए 1800-1807198, 1800-1807198। और इन नंबर्स पे आप जो है अपने विचार, अपनी कोई दुविधा जो है साझा कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे ईमेल आईडी के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो है akashvanibaltal@gmail.com, यानी akashvanibaltal@gmail.com।

श्रोतो, आप समाप्त कर रहे हैं विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जी हाँ, FM पहलगाम 100.1 MHz पर, FM बालतल 103.7 MHz पर, DTH की आराधना सरोज न्यूज ऑन एयर के मोबाइल ऐप और प्रसाद भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें, प्रशासन ने इस यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। दोनों पारंपरिक मार्गों पर भक्तों के लिए स्वास्थ्य एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं जो है, सुविधाओं की व्यवस्था की हुई है। हमारी यही मनोकामना है सभी तीर्थ यात्रियों के लिए कि उनकी यात्रा सफल और मंगलमय हो। तो श्रंशन के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने हुए हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं प्रातः 7 बजे से 6 बजे तक शाम के, और एक बार फिर आपके साथ साझा करना चाहेंगे 4 बजे का अपडेट जो है

25,085, तो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। 4 बजे तक 25,085 तीर्थ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त किए हैं। और संख्या बोलेंगे आपको ये पुरुषों की 14,954, महिलाएं 9,451, बालक 240, साधु 166, साध्वी 20 और सुरक्षा कर्मचारी 256। इस तरह कुल आंकड़ा बन रहा है जो है 4 बजे तक हमारे पास जो अपडेट है 25,085 जो है तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किया है। और बहुत ही बड़ा आंकड़ा है जो हम कह सकते हैं रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है इन 8 दिनों का। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा FM बालतल और FM पहलगाम के संग।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के साथ आप जुड़े हुए हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। जी जायका
1: जी, अपने श्रोताओं से हम मौसम विभाग से मिली जानकारी जो है साझा करना चाहेंगे, जबकि मौसम जो है अभी हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही सुहाना है। और इस सुहाने से मौसम में हमारे जो तीर्थ यात्री हैं यात्रा का आनंद जो है भरपूर ले रहे हैं और यात्रा जो है दोनों मार्गों से सुचारू रूप से जारी है। और यहाँ पर जो है मौसम विभाग के से मिली जानकारी इनके साथ साझा करना चाहेंगे। अगर हम जम्मू से बटोट मार्ग की बात करें तो वहाँ पर जो है आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और आमतौर पर हम ये कहेंगे कि मध्यम से हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है हो सकती है।
0: जी हाँ, वहाँ अगर हम बात करें बटवोत से अनंतनाग की बात करें तो वहाँ पर भी आंशिक रूप से जो है बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी भी हो सकती है।
1: जी जी, अब अनंतनाग से पहलगाम की, अब पहलगाम मार्ग की बात करें तो अनंतनाग से पहलगाम की ओर जो है अगर वहाँ के मौसम की बात करें तो वहाँ पर भी जो है आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने के इम्कान भी है।
0: और पहलगाम से पवित्र गुफा यानी चंद्रवारी के इलाके में भी ऐसा ही कुछ मौसम रहने वाला है। आंशिक रूप से आमतौर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा भी हो सकती है।
1: अब पहलगाम से
0: पवित्र गुफा
1: की ओर की बात करें यानी चंदनवारी की बात करें और शेषनाग की बात करें तो वहाँ पर भी जो है आंशिक से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा भी हो सकती है।
0: तो पहलगाम की बात करते हैं, पहलगाम से लेकर केव तक महागुण स्टॉप के हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी जो है हल्की सी बारिश होने के इमकान है और आंशिक

0: रूप से बादल छाए रहेंगे।
1: और अब अगर पहलगाम से लेकर पोषपत्री तक की बात करें, यानी कि पहलगाम के मार्ग से होते हुए पवित्र गुफा की ओर पोषपत्री एरिया की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर भी जो है आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल जो है छाए रहेंगे।
0: पहलगाम से लेकर होली केव यानी कि पंचत्रिणी की बात करें, वहाँ पर भी जो है आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की जो है वर्षा होने की संभावना है।
1: और पहलगाम से पवित्र गुफा यानी संगम की बात करें, और पहलगाम से लेकर पवित्र गुफा की ओर भी की भी अगर बात करें, तो वहाँ पर भी जो है आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।
0: जी हाँ, अब करते हैं बात अनंतनाग से श्रीनगर की और श्रीनगर से बालतल की। तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ मिलाजुला मौसम रहने वाला है। आंशिक रूप से जो है बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने की संभावना है।
1: और अब करते हैं बात बालताल से पवित्र गुफा की ओर यानी दुमेल की तरफ की बात करते हैं, तो वहाँ से भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा होने की आशा, अगर ये हम कह सकते हैं कि आशा भी है।
0: बिल्कुल, बालतल से पवित्र गुफा यानी कि ब्रारी मार्ग की बात करेंगे, वहां पे भी ऐसा ही कुछ मौसम रहने वाला है।
1: बालताल से लेकर पवित्र गुफा यानी संगम की बात करें, या बालताल से लेकर पवित्र गुफा तक की बात करें, तो
0: जी
1: यही है कि आंशिक रूप से लेकर आम तौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा भी हो सकती है, और कहीं कहीं जो है हम ये कह सकते हैं बिजली भी गरज सकती
0: यानी कि
1: है।
0: गरज के साथ छींटे पड़ने के भी इम्कानात हैं।
1: जी जी
0: तो ऐसा ही हम कह सकते हैं, ये ऐसा ही जो जितने भी हमने एरियाज की बात की, ऐसा ही मौसम
1: एक
0: रहने
1: जैसा
0: वाला
1: मौसम
0: है। जी
1: है,
0: बिल्कुल
1: सुहाना मौसम हम कह सकते हैं।
0: बिल्कुल, और इस सुहाने मौसम में आशा करते हैं हमारे यात्री जो है यात्रा का आनंद लेंगे और लेते रहेंगे। तो ये थी मौसम विभाग से मिली जानकारी।

0: श्रोताओं जुड़े हुए हैं आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के संग जो आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। जी हाँ, हमने बेस कैंप में आरती रिकॉर्ड की है, आइए आरती का आनंद लेते हैं।
1: सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी शिव भक्तों का बाबा बर्फानी जी के इस पावन पवित्र अद्भुत धाम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी शिव भक्त बड़े ही पुण्य कर्मी हैं, जो आप सभी आज प्रातःकालीन आरती के दर्शन कर रहे हैं। MH1 चैनल के माध्यम से जो भक्तजन देश एवं विदेश में बाबा जी की इस पावन आरती की दर्शन कर रहे हैं, वह भी बड़े ही पुण्यकर्मी हैं। प्रिय बंधुओं, ये जो धाम है, ये त्याग का प्रतीक है। इस धाम में जब बाबा बर्फानी जी ने मां पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, तो उससे पहले उन्होंने अपने मार्ग में अपनी सभी जो जैसे अपने गण, अपना श्रृंगार,

इत्यादि सभी का अपने मार्ग में ही त्याग कर दिया। इसलिए प्रिय बंधुओं, आप भी इस त्याग को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि ये जो त्याग है, इस त्याग से ही आप बाबा बर्फानी से जो मिल सकते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमारे शास्त्र कहते हैं, ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवीषु खड़ एते नित्य दुखिता। जो लोग दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने इस धाम में आकर कुछ सीखना है, तो यही सीखना है, हमने त्याग क्या करना है, हमने अपने अंदर की ईर्ष्या का त्याग करना है, घृणा का त्याग करना है, हमें अपने जीवन में संतोष धारण करना है। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और अपने अंदर के, अपने भीतर के क्रोध का त्याग करना है। जो क्रोध है, यही जो क्रोध है, ये हमारे और बाबा के बीच में जो दीवार है, इसलिए इस क्रोध का त्याग करें। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और हर बात पर शंका जो है, वो भी परमात्मा के साथ मिलन में एक वादा है। इसलिए हमें हर बात पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवीषु, और हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जो हम जीवन में हम कर्म करते हैं, उनके आधार पर ही हमें अपने जीवन का जापन करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, इस धाम में हमें यही सीखना है, हमें ईर्ष्या करनी है तो अपनी अपने अंदर की बुराई से करनी है, घृणा करनी है तो अपने अंदर की बुराई से करनी है। हमें अगर संतोष हमारे अंदर नहीं है तो किस चीज का नहीं होना चाहिए, परमात्मा से प्रेम का हमें संतोष नहीं होना चाहिए। और घृणा करनी है तो बुराई से, क्रोध से। प्रिय बंधुओं, इन सभी बातों को अपने जीवन में धारण करते हुए आज प्रातःकालीन आरती में प्रवेश करते हैं। बोलिए शंकर।

आप सभी भक्तजन बाबा के पवित्र धाम में बैठे हैं। कहते हैं भोले बाबा स्तुतियों से भजनों से बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी भक्तजन आज भोले बाबा ने हमें अवसर दिया है तो दोनों हाथों से ताली का वादन करते हुए हंसते हुए मुस्कुराते हुए भोले बाबा के सुंदर भजन का ध्यान करेंगे। बोलिए।

0: शंकर भगवान की
1: जय।
0: धर्म के
1: जय हो,
0: धर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भावना हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय हो,
0: मात पिता की
1: जय हो,
0: गुरु जनों की
1: जय हो,
0: सभी संतों की
1: जय हो,
0: सभी भक्तों की
1: जय हो,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय हो,
0: आज के आनंद की
1: जय हो,
0: भारत माता की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय हो,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय हो,
0: बाबा बर्फाने की
1: जय हो,
0: पार्वती पते
1: हर हर हर महादेव। शिव शंभु ओम निरावलंबस्य ममावलंबं विभाजिताजेत् विभक्तदम्बं मदीय पापाचलपादजं प्रवर्ततां वाचि सदैव बं बं महादेव।

0: की जय।
1: सभी भक्तजन आरती आपको बाहर गेट के मिलेगी। बोलिए शंकर भगवान की।
2: शो तो आप बेस कैंप में रिकॉर्ड की गई आरती का आनंद ले रहे थे। आप जुड़े हुए हैं विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के साथ। तो 5 बजे का अपडेट आपके साथ साझा करना चाहेंगे। 5 बजे तक 27,378 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। पुरुषों की संख्या रही है 16,274, महिलाएं 10,359, बालक 268, साधु 173, साध्वीज 23 और सुरक्षा कर्मचारी 281। इस तरह से 5 बजे तक जो 27,368 तीर्थ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन पाए हैं। जी हाँ श्रोताओं, आप बने हुए हैं हमारे साथ यानी FM बालथल और FM पहलगाम के संग।
3: और श्रोताओं को यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि आज प्रातःकालीन भगवती नगर जम्मू से यानी आधार शिविर जम्मू से कुल मिलाकर 8,150 तीर्थयात्रियों को 334 छोटे बड़े वाहनों में रवाना कर दिया गया।
2: तो शो तो आपको बता दें, इसी के साथ ही हमारी आज की सभा जो है समाप्त तो होती है। आपको बता दें श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बालतल में हमारे साथी इंजीनियर्स थे मंजूर अहमद नायकू, माफ़ कीजिएगा मंजूर अहमद नजार, इरशाद नायकू, शौकत अहमद खान। मैं आपके साथ ही उद्घोषक शाहिना ऋषि और मेरे साथ साइका सलीम।
3: और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारुखवानी, श्री सुरेश चंद मीना और श्री गुलाम रसूल आखून। प्रातः 7 बजे श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण लिए आप

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

प्रभु श्री राम सूपनखा का आत्मनिवेदन न मानते हुए अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और भाई लक्ष्मण अपने प्रभु राम जी का आदेश पाते ही तीर से सूपनखा की नाक काट लेते हैं। और उधर रावण के दरबार में रंग रंग उत्साह, जेहर देखा हर तरफ खाली वाहे वाह। इतने में रोवत उहां गैल सूपनखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी बहन का हाल मारीच को समझा बुझाकर उसे स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी भेजते हैं।

लक्ष्मण का समझाए के राम बहुले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस और प्रभु राम के जीवन प्रसंगों पर आधारित इस विशेष नाटक की पांचवी कड़ी।

0: जनसमूह को साथ ले अपने भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी तीसरे दिन श्रृंगवेरपुर के पास जा पहुंचे।
1: भरत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कहीं उनके मन में कुछ कपट तो नहीं है? अवश्य है, न होता तो सेना क्यों लाते? शायद वे समझते हैं कि राम वन में अकेले हैं, उनको मारकर निष्कंटक राज्य क्यों ना भोगा जाए। आखिर कैकेयी के बेटे हैं ना, लेकिन वे ये नहीं जानते कि सारे देवता और दानव मिलकर भी यदि आए तो राम को नहीं जीत सकते। सैनिकों सावधान हो जाओ, हत बांसो बोरहु तरन, कीजिए घाटा रो। देखता हूं मेरे रहते गंगा कैसे पार करती हैं।

0: ऐसी मृत्यु कब कब मिलती है। और राम के लिए मरने में तो दोनों हाथ लड्डू हैं, यश भी और मुक्ति भी।
1: लाओ मेरा तूणी धनुष और कवच उठा लाओ, देर मत करो।
2: जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। राम के प्रताप और आपके बल से हम भरत की सेना के एक एक योद्धा को चुन चुन कर मार डालेंगे। जीते जी पीछे हटने वाले नहीं, सारी धरती को रुंड मुंड से पाट देंगे।
1: युद्ध के बाजे बजने दो।
2: बहुत ही अच्छा शगुन है, रण में अवश्य सफलता मिलेगी।
3: ठहरो, राम ही भरत मनावन जाहीं, सगुन कहीं अस विक्रहु नाहीं। सगुन कहता है कि भरत राम को मनाकर लौटा लाने के लिए बन जा रहे हैं, तुम उनसे जाकर मिलो, युद्ध का अवसर नहीं आएगा।
0: शायद आप ठीक कहते हैं, नीति कहती है सहसा करे पछताहें बिमूढ़ा। भरत का शील स्वभाव जाने बिना लड़ाई की घोषणा करना अपनी ही हानि करना है, इसलिए तुम सब लोग घाट पर डटे रहो, मैं अकेला जाकर सब भेद ले आता हूं।
4: उन्हें इस प्रकार समझा बुझाकर और भेंट के लिए नाना प्रकार की सामग्री लेकर वे भरत से मिलने के लिए चले। दूर से ही अपना नाम बताकर दंडवत प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ के मुख से ये सुनकर कि राम के सखा निषाद राज उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, भरत झट रथ से कूद पड़े और उन्हें उठाकर छाती में भर लिया। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाई, मनहु लखन सन भेट भई, प्रेमुन हृदय समाई।
5: धन्य धन्य धन्य।
0: श्रृंगवीरपुर का निवासी निषाद आपके चरणों में प्रणाम करता है।
6: कहिए निषाद राज, सब प्रकार से मंगल तो है।
0: प्रभो, आपकी कृपा से मेरे और मेरे करोड़ों कुलों का मंगल ही मंगल है। मेरे जैसे कपटी कायर मूर्ख और सब प्रकार से गए बीते को जब से राम ने अपना लिया, तभी से मैं संसार का भूषण बन बैठा हूँ।
4: निषाद की ऐसी प्रीत देखकर और सब लोगों ने भी उन्हें गले से लगा लिया। सबको लेकर वे श्रृंगवीरपुर आए और गंगा के दर्शन कर गदगद हो उठे। करहिं प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी, करि मज्जनु मांगहिं कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। भरत बोल उठे,
6: माँ गंगे, आपका रेणु सब सुख देने वाला है, काम धेनु के समान है। मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि राम और जानकी के चरणों में मेरा सहज स्नेह बना रहे। निषाद राज, चलो चलकर मुझे वे सब स्थान दिखलाओ जहाँ राम लक्ष्मण और सीता ने शयन किया था, जिससे मेरे नेत्रों को शांति मिले और मन की जलन मिटे।
4: जब भरत जी ने उन स्थानों को देखा तो उनके अंतर से जो प्रीति उमड़ी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चरण रेख रज आँखिन लाई, बनैन कहत प्रीति अधिकाई। वो बार बार राम सीता और लक्ष्मण की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे।

0: कह कही अमंगल मूला, भय सि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं थिक थिक अघ उदति अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। मैं पापों का समुद्र हूँ, अभागा हूँ, मुझे धिक्कार है। मेरे ही कारण ये सारा बखेड़ा उठ खड़ा हुआ है। कुल कलंक करि सृजउ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता।
1: नाथ, आप व्यर्थ क्यों अपना जी छोटा कर रहे हैं? आप राम को प्यार करते हैं और राम आपको प्यार करते हैं। विधि बाम की करनी कठिन, जिहि मातु कीनी भावरी। ते राति पुनि पुनि करहिं, प्रभु सादर सराहना रावरी। मैं सौगंध खाकर कह सकता हूँ कि राम किसी को भी उतना प्रिय नहीं समझते जितना आपको। विश्वास कीजिए, अंत में सब मंगल ही मंगल होगा।
2: निषाद के इस प्रकार बार बार धीरज धराने पर भरत विश्राम करने के लिए चले गए। सवेरे बहुत जल्दी उन्होंने गंगा नदी को पार किया और सीताराम सीताराम रटते हुए प्रयाग पहुंच गए। भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए थे। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत जी ने भाव विह्वल होकर त्रिवेणी की स्तुति की।
0: अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्बान। जनम जनम रति राम पद, यह परदान न आन।
3: तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बाद गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही।
2: इसके पश्चात भरत जी ने मुनिवर भरद्वाज के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया। मुनिवर ने भरत जी से कहा, मैं तो तुम्हें देखकर यही समझ रहा हूँ मानो राम का प्रेम ही तुम्हारा रूप धरे चला आया है। भरत जी ने अपनी व्यथा प्रकट की। भरद्वाज मुनि के समझाने पर वे कुछ शांत हुए और एक रात वहाँ बिताकर सवेरा होते ही मुनि को प्रणाम कर वे निषाद राज के हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ गए। जैसे साक्षात प्रेम ही दो शरीर धारण किए चला जा रहा हो। राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धरी जनु अनुरागु। मार्ग में जो भी भरत को देख लेता ऐसा लगता मानो उसने परम पद पा लिया है। गांव गांव के स्त्री पुरुष अपना अपना काम छोड़कर उन्हें देखने के लिए दौड़े चले आते। प्रेम में मगन हो वे ऐसी अटपटी बातें करते कि मन उमड़ उमड़ पड़ता।
4: कौन आ रहे हैं?
5: ऐसा लगता है जैसे सचमुच राम लक्ष्मण चले आ रहे हैं।
4: अच्छा, राम लखन सखी हो ही कि नाही? बै बप्पू बरन रूप सोई आली, सीलु सनेहो सरिस सम चाली।
6: बेशु न सो सखी सीयन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई एही भेदा।
4: ना ना, तुझे क्या वो कहानी नहीं मालूम कि किस प्रकार राम को राज तिलक मिलने वाला था और किस प्रकार भरत की माता कैकेयी ने विघ्न डाला? लेकिन सखी, भरत तो भरत ही हैं।
6: देखो तो, चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आज।
4: हाय, कैकेयी माँ की कोख से ऐसा योगी पुत्र कैसे हुआ?
6: इसमें रानी का क्या दोष? ये सब करतूत तो विधाता की ही है, पर हमारे लिए तो ये अच्छा ही हुआ। हम ओछे कुलों

0: वाली, मलिन कर्म करने वाली, बुरे गांव में रहने वाली, हमें इनके दर्शन मिले। सच सखी, हमने कोई बड़े ही पुण्य कर रखे थे जिस कारण आज हमें इनके दर्शन हुए।
1: भरत के दर्शन पाकर रास्ते के लोगों के भाग्य खुल गए। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलपतरु जामा। और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते थे, अच्छे अच्छे शकुन होते जाते थे। उन्हें विश्वास हो चला था कि राम अवश्य मिलेंगे। प्रेम की मदिरा में सब ऐसे मस्त थे कि मुख से ठीक ठीक शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। शिथिल अंग पग मग डग डोलही, बिह्वल बचन प्रेम बस बोलही। उसी समय निषाद राज ने कहा,
2: नाथ वो देखिए, वो है चित्रकूट पर्वत। उसके समीप ही मंदाकिनी के तट पर सीता जी के साथ दोनों भाई कुटी बनाकर निवास करते हैं।
3: वो है चित्रकूट पर्वत कामदगिरी, वहां रहते हैं मेरे राम। सीतापति राम की जय।
4: सीतापति राम की जय।
0: नाथ, मैंने स्वप्न में देखा है कि आपकी विरह की तपन से अपनी देह तपाए हुए भरत जी सारा समाज साथ लिए चले आ रहे हैं, और सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी।
5: लक्ष्मण, यह स्वप्न कुछ अच्छा नहीं है। जान पड़ता है कोई बहुत बुरा समाचार आने वाला है। देखो तो आकाश धूल से भर गया है। पशु पक्षी घबराए हुए आश्रम की ओर भागे चले आ रहे हैं। बात क्या है
6: नाथ? नाथ, भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ इधर ही आ रहे हैं।
5: भरत आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं?
6: नाथ, उनके साथ बहुत बड़ी सेना भी है।
5: सेना है तो कहीं भरत मुझे लौटा लेने के लिए तो नहीं आ रहे हैं? एक ओर पिता का वचन, दूसरी ओर भरत का प्रेम। लेकिन नहीं, भरत तो सज्जन है, ज्ञानी है, वे मेरी बात निश्चय ही मान लेंगे।
7: स्वामी क्षमा कीजिए, मैं बिना पूछे ही बोलने लगा हूं। आपका सेवक जो ठहरा, दृष्टता के लिए क्षमा कीजिएगा।
5: नहीं नहीं लक्ष्मण, कहो क्या कहते हो?
7: आप बड़े सहृदय और सरल चित्त वाले हैं, सबको अपने समान समझकर प्रेम करते हैं। लेकिन स्वामी, विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूड मोह बस हो ही जनाई। मैं मानता हूं कि भरत नीतिवान है, सज्जन है, ज्ञानी है, और आपके चरणों में उनकी प्रीति भी है। लेकिन तेउ आजु राम पद पाई, चले धर्म मर्जाद मिटाई।
5: लक्ष्मण,
7: वे समझते हैं राम वन में अकेले हैं, इसलिए सेना लेकर आ रहे हैं।
5: लक्ष्मण, लेकिन।
7: लेकिन क्या? अगर उनके मन में कपट ना होता तो सेना क्यों लाते? भरत ही दोसु देह को जाई, जग बौराई राजू पद पाई। नाथ, मेरे कहने का बुरा ना मानिएगा, उन्हीं के कारण हमें ये दिन देखना पड़ा है। अब और नहीं सहा जा सकता। मैं क्षत्रिय हूं, रघुकुल में मेरा जन्म हुआ है, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं क्षण भर में भरत को सिखा दूंगा कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। राम निरादर कर फल पाई, सो वह समर सेज दो भाई। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं, जो सहाय कर संकरु आई, तो मारो रन राम दुहाई।
0: तात, तुम्हारा प्रताप सभी जानते हैं, किंतु सोच विचार कर ही कोई कदम उठाना चाहिए।
5: लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। संसार में यदि सबसे बुरा कोई मद है तो वह राजमद है। लेकिन जहां तक भरत का प्रश्न है, उनके समान श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हुआ। सुनो, भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी सीख रनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अंधकार भले ही सूरज को निकल जाए, आकाश भले ही बादल में खो जाए, पृथ्वी भले ही अपना स्वभाव छोड़ दे, मच्छर की फूंक से भले ही सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राजमत कभी नहीं सता सकता। लखन, तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना।

0: जिस समय श्री राम जी लक्ष्मण जी को इस प्रकार समझा रहे थे, उसी समय भरत जी निषाद राज के साथ श्री राम की ओर आ रहे थे। उनका मन शंकाओं से भरा हुआ था। सोच रहे थे कि कहीं मेरे आने का समाचार पाकर राम चले न जाएं। तभी निषाद राज ने टीले पर चढ़कर बरगद का वो पेड़ दिखाया जिसके समीप राम की कुटिया थी। फिर तो जहां भी भरत जी राम के चरण चिन्ह देख लेते, उसकी धूल उठाकर सिर माथे पर लगाते। उस समय वे इतने प्रेम विभोर हो उठते कि उनकी दशा देखकर जीव ही नहीं जड़ भी प्रेम में डूब जाते। धन्य है भरत, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। उसी समय उन्होंने राम को देखा। लसत मंज मुनि मंडली मध्य सीय रघुनंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। उनका मन प्रेम से मगन हो उठा। हर्ष शोक सुख दुख सब भूलकर वे पुकारते हुए धरती पर गिर पड़े।
1: हे नाथ रक्षा करो, हे स्वामी रक्षा करो, रक्षा कर, रक्षा कर।
2: भगवान भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं।
0: उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। बर बस लिए उठाई उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान। इस मिलन के प्रेम का वर्णन कैसे किया जा सकता है? कोई भी कवि मन वचन और कर्म से इसका वर्णन नहीं कर सकता। दोनों भाई सुध-बुध भूलकर परम प्रेम में उमगे जा रहे थे। सीता जी तो इतनी विफल हो उठी थी कि बोल ही नहीं सकी। वास्तव में उस समय न तो किसी ने कुछ कहा ही, न किसी ने कुछ पूछा ही, क्योंकि सबका मन इतना प्रेममय था कि कुछ सूझ नहीं रहा था। किसी तरह साहस करके निषाद राज ने कहा,
3: हे नाथ, मुनिराज वशिष्ठ के साथ सब माताएं, अयोध्या के नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग में व्याकुल होकर आपसे मिलने यहाँ आए हैं।
0: सुनते ही राम उधर चल पड़े। उन्होंने मुनि वशिष्ठ को प्रणाम किया, फिर अपनी माताओं को देखा, जैसे सुंदर लताओं को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई, पग परिकीन प्रबोध बहुरी, काल करम विधि सिर धरि थोरी। इस प्रकार सभी को सांत्वना देकर और सबसे स्नेह से भेंट करके वे आश्रम की ओर लौटे। वहां फिर मिलन समारोह शुरू हो गया। सीता ने अपनी सासुओं को देखा तो एकाएक सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली, मानो राज हंसिनिया बधिक के हाथ में पड़ गई हूं। और जब मुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनाया तो सबके करुण क्रंदन से वो वन प्रांतर कातर हो उठा। लगा जैसे महाराज का स्वर्गवास उसी दिन हुआ हो। मुनि वशिष्ठ के समझाने पर सब लोगों ने स्नान किया और दो दिन का व्रत रखा। उसके बाद दो दिन और वे उस वन प्रांतर में घूमते रहे। वनवासी कोल किरात और भील उनका नाना प्रकार से स्वागत करते हैं।

उनका प्रेम देखकर अयोध्यावासी लज्जित हो उठते। सोचते, राम से इनको इतना प्रेम है, उसके सामने हमारा प्रेम तो कुछ भी नहीं है।

0: लेकिन सबके मन शंकाओं से भरे हुए थे। राम लौटेंगे भी कि नहीं? तभी गुरु वशिष्ठ ने भरत को बुला भेजा, कहा, सबको सुख देने वाला तो एक ही काम है कि राम का राज तिलक हो। लेकिन सोचने की बात यह है कि राम अयोध्या वापस कैसे जाएंगे?
1: हे मुनिश्रेष्ठ, आप ही कुछ उपाय सुझाइए।
0: इसका एक ही मार्ग है और वो ये है कि तुम दोनों भाई वन में रहो और लक्ष्मण सीता सहित राम लौट जाए।
1: मैं तो जन्म भर वन में वास करने को तैयार हूँ, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। हे गुरुदेव, राम और जानकी तो सबके हृदय की बात जानते हैं और आप भी सर्वज्ञ हैं, इसलिए आपने जो निश्चय किया है उसे पूरा कर डालिए।
0: भरत के ये वचन सुनकर और उनका ऐसा स्नेह देखकर मुनि वशिष्ठ सहित सभी लोग गदगद हो उठे। भरत की विराट महिमा का पार कौन पा सकता है? भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। इसलिए वे उनको लेकर राम के पास पहुंचे, बोले,
2: भद्र राम, तुम तो सब कुछ जानते हो, इसलिए कोई ऐसा उपाय ढूंढ निकालो जिससे सबको संतोष हो। हम लोग बहुत दुखी हैं, अपना हित अनहित कुछ नहीं सोच पा रहे हैं।
3: गुरुदेव, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? उपाय तो सब आपके हाथों है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पालन करूंगा।
2: राम, तुमने बात तो ठीक कही पर भरत के स्नेह का विचार नहीं किया। मेरी बुद्धि तो भरत के हाथ बिक चुकी है। मैं शिव की दुहाई देकर कहता हूं कि तुम भरत की इच्छा का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करोगे उसी से सबका कल्याण होगा, इसलिए पहले भरत की प्रार्थना सुन लो।
3: गुरुदेव, मुझे आपकी सौगंध है, नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयेउ न भुवन भरत समभाई। जिस भरत पर आपका इतना स्नेह है उसके सौभाग्य का वर्णन भला कौन कर सकता है? वे मेरे छोटे भाई हैं, उनके मुंह पर उनकी बड़ाई करने में मुझे संकोच हो रहा है। जो कुछ भी वे कहेंगे वैसा ही करने में मैं भलाई समझता हूं।
2: तब हे भरत, तुम संकोच त्याग कर अपने मन की बात कह डालो।
1: मैं क्या कहूं, मुझसे बड़ा पापात्मा इस संसार में कोई नहीं।
3: देखो भाई, जहां तक मेरी बात है मैं तो तुम्हें भली भांति जानता हूं, पर मैं करूं तो क्या करूं? जिन महाराज ने मेरे प्रेम और सत्य की रक्षा के लिए प्राण तक त्याग दिए उनकी बात कैसे टालूं?

0: उधर गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी बात का ध्यान रखूं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं।
1: हे स्वामी, आप वही कहिए जिससे आपके चित्त में किसी प्रकार की उलझन पैदा ना हो, क्योंकि जो सेवक अपने स्वामी को उलझन में डालकर अपना भला करना चाहता है उसके समान नीच कोई नहीं हो सकता। यदि आप लौट चलते तो सबका हित होता, पर आपकी आज्ञा पालन करना उससे भी कई करोड़ गुना अच्छा है। स्वारथ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का, यह स्वारथ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। मैं राज तिलक की सामग्री ले आया हूं, आप उसे स्वीकार करके सफल कर दीजिए। मुझे छोटे भाई के साथ वन में छोड़ दीजिए और आप राज्य संभालिए। यदि आप वन ही में रहना चाहते हैं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। या फिर हम तीनों भाई वन में रह जाते हैं, आप सीता जी सहित लौट जाइए। इनमें से जो भी प्रस्ताव ठीक लगे स्वीकार कीजिए, मुझ पर निर्णय मत छोड़िए। कहूं वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत किंचित चेतु।
2: कुछ निश्चय हो पाता कि समाचार मिला राजा जनक आ पहुंचे हैं। एक बार फिर उस मिलन समारोह में करुण रस की सरिता प्रवाहित हो चली। सीता की माता राम की माताओं से मिलने आई। वो मिलन भी कैसा अपूर्व था। माता कौशल्या बार बार जनक पत्नी से यही कहती थी कि राजा जनक लक्ष्मण को लौटा ले चलें और भरत को वन में रहने दें। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। लेकिन भरत और राम के प्रेम को तर्क से नहीं समझा जा सकता। सब यही चाहते थे कि राम राजा हों और भरत युवराज। सभी निरंतर इसी प्रश्न को लेकर विचार विनिमय कर रहे थे। सभा फिर जुड़ी। मुनि वशिष्ठ ने भरत के उच्च विचारों का परिचय देते हुए कहा,
3: राम, मैं तो यही कहता हूं कि तुम जो आज्ञा दोगे वही सब लोग मान लेंगे।
0: हे नाथ, जहां आपके साथ मिथिलेश जैसे महापुरुष विद्यमान हो वहां मेरा कुछ भी कहना धृष्टता होगी। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि आप तथा मिथिलेश जो भी आज्ञा देंगे वही मैं शिरोधार्य करूंगा।
1: आप लोग मेरा यह अत्यंत अनुचित व्यवहार क्षमा कर दीजिए। क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कहूं बदन मृदु बचन कठोरा। हे राम, आप मेरे माता पिता गुरु स्वामी और मित्र सभी कुछ हैं, परम हितकारी और अंतर्यामी भी हैं। अपने अज्ञान के कारण आपके और पिताजी के वचन टालकर ये सारा समाज लेकर यहां चला आया हूं। ये बड़ी ढिठाई में कर रहा हूं। आप मुझे यही समझकर क्षमा कर दीजिए कि मेरा जी बहुत दुखी है। अब आप आज्ञा दें और वही करें जिसमें मेरा कल्याण हो। अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा।
0: भाई भरत, तुम धर्म धुरीण हो, तुम्हारा प्रेम अनुपम है। मन वचन कर्म से तुमने कभी कोई दोष नहीं किया। तुम सूर्य वंश के नियम को, सत्य का पालन करने वाले पिता को, समय को, समाज की दशा को, गुरुजनों की मर्यादा को, मित्र और शत्रु सबके मन को समझते हो। किसका क्या कर्तव्य है यह भी तुम जानते हो, और यह भी जानते हो कि कर्तव्य का पालन करने में ही तुम्हारा और मेरा हित है। इसीलिए भाई, तुम वही काम करो और मुझसे भी वही कराओ जिससे सूर्य कुल की मर्यादा की रक्षा हो।
1: किंतु आप मुझे संकट में
0: असह्य संकट सहने पर भी तुम प्रजा और परिवार को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करो। तुम्हें कोमल जानकर भी मैं ऐसा कठोर आदेश दे रहा हूं, लेकिन विपत्ति में अच्छे

0: भाई उसी प्रकार सहायता करते हैं जैसे बाण का आघात होने पर स्वयं अपना हाथ आड़े आकर उसे रोक लेता है।
1: हे नाथ, आपके वचन सुनकर मुझे वही सुख प्राप्त हो गया जो आपके साथ वन जाने में मिलता। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धर सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवध पार पावो जैसे। मेरे मन में एक और भी लालसा है, पर संकोच के कारण कह नहीं पाता।
0: कहो कहो, संकोच की क्या बात है?
1: यदि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट के मुनियों के आश्रम, तीर्थ, वन प्रांतर, विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित ये धरती घूमकर देखाऊं।
0: भाई, यहां मेरी नहीं अत्रि मुनि की आज्ञा लेकर निर्भय होकर वन में विचरण कर सकते हो। उन्हीं के प्रसाद से इस जंगल में मंगल छाया हुआ है।
2: राम और भरत की ये वार्ता सुनकर सब लोगों को हर्ष भी हुआ और विषाद भी। विषाद इसलिए कि राम को अब वन में ही रहना पड़ेगा। माता कौशल्या ने समझ लिया कि संसार में जितना सुख है उतना ही दुख भी है। राम मातु दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधी रानी। उधर अत्रि मुनि की आज्ञा लेकर भरत 5 दिन तक उस पवित्र वन में घूमते रहे। उसके बाद एक बार फिर सभा स्थल पर इकट्ठे हुए। राम संकोच के कारण कुछ नहीं कह पा रहे थे, लेकिन भरत उनके मन का भाव ताड़ गए। धीर गंभीर स्वर में वे बोले,
1: हे नाथ, आपने मेरी सारी अभिलाषाएं पूरी कर दी। मेरे कारण सब लोगों को और आपको भी बहुत कष्ट हुआ। अब मुझे वो आधार तो दीजिए जिसके आदेश पर मैं 14 वर्ष तक अयोध्या की सेवा करता रहूं। इस अवधि में मुझे क्या करना होगा ये भी समझाइए।
3: धन्य हो,
4: धन्य धन्य हो,
3: धन्य हो, धन्य
0: हो। भाई, जब तक गुरु वशिष्ठ और राजा जनक जीवित हैं, हमें और तुम्हें स्वप्न में भी किसी बात का कष्ट नहीं हो सकता। हमारा कल्याण इसी बात में है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है उससे यदि भूल में कोई बुरा काम भी हो जाए तो वो बुरा नहीं समझा जाता। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पालें, चले हूं कुमग पग पर ही न खालें। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अयोध्या जाओ और प्रजा का पालन करो।
1: लेकिन मेरा आधार?
0: तुम्हारा आधार तुम स्वयं हो।
1: नहीं,
0: तब
1: आपकी चरण पादुकाएं, मैं उन्हीं से आदेश लेकर प्रजा का पालन कर पाऊंगा।
0: जैसी तुम्हारी इच्छा।
5: श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय।

0: ऐसा श्रेष्ठ अवलंब पाकर भरत फूले नहीं समाए। उन्हें अब ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे सीता और राम के साथ रहने में होता। लेकिन अभी तो विदा का वो पावन और विषाद से भरा दृश्य शेष था। सब एक दूसरे से भेंट करते नहीं आघाते थे। तन मन वचन सब कहीं प्रेम ही प्रेम उमड़ा पड़ रहा था। मेरी काव्यवाणी उस दृश्य का वर्णन नहीं कर पाएगी। उसका स्मरण करते ही वो लज्जा से सकुचा गई है। विशेषकर सीता जिस समय अपने परिजनों से मिलकर लौटी और अपनी सासुओं से भेंट की, उस प्रीति का वर्णन करने के लिए तो कवि के हृदय में तनिक भी शक्ति नहीं रही है। परिजन मात पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ही न हुलासु। लेकिन इस पर्व का भी अंत आना था। सबको विदा करके राम लक्ष्मण और सीता परिजनों के वियोग में बहुत देर तक दुखी मन बैठे रहे और भरत के प्रेम तथा स्वभाव का बखान करते रहे। भरत स्नेह स्वभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत सबानी। उधर भरत जनक और वशिष्ठ राम के विरह में बड़े अनमने से उनका गुणगान करते हुए चौथे दिन अयोध्या पहुंच गए। राजा जनक ने 4 दिन वहां ठहरकर सब प्रबंध किए, फिर वे जनकपुर लौट गए। धर्मात्मा भरत ने शत्रुघ्न को माताओं की सेवा का भार सौंपा और गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया।
1: गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं इस अवधि में विशेष नियम का पालन करना चाहता हूं।
2: समुझब करब कहब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई।
0: गुरु की आज्ञा पाकर भरत जी ने शुभ मुहूर्त में राम के चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया और स्वयं अयोध्या के दक्षिण में स्थित नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। उन्होंने राज सुख छोड़ दिया और तापस वेश धारण कर लिया। अबध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई, तेहि पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरी की जिमी चंपक बागा।

सीता जी ने विनम्र भाव से अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया की चरण वंदना की। अनसुया जी ने उन्हें शुभाशीष देकर पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया।

विश्राम पाकर ऋषि के चरण कमलों में शीश नवा श्री राम जी वन को चले। उनकी छवि का वर्णन मैं किन शब्दों में करूं। आगे राम अनुज पुनि पाछे मुनिवर बेख बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहै कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। मार्ग में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला।

फिर शरभंग मुनि का उद्धार कर श्री राम आगे बढ़े। श्रेष्ठ मुनियों के समूह उनके साथ हो लिए। श्री राम ने आगे चलकर एक विशाल अस्थि समूह देखा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि राक्षसों ने सभी ऋषि मुनियों को मारकर खा लिया है। ये उन्हीं की हड्डियों का ढेर लगा है। इससे श्री राम जी के नेत्रों में आंसू छलक आए। ऋषि मुनियों को भयभीत जानकर उन्होंने निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई पन कीन सकल मुनिन के आश्रमहि जाय जाय सुख दीन। इसके पश्चात आगे चलकर श्री राम जी ने सुतीक्ष्ण की अविचल और निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। मुनि सुतीक्ष्ण ने श्री राम की इन शब्दों में स्तुति की।

सुतीक्ष्ण की स्तुति से प्रसन्न होकर श्री राम जी ने उन्हें अपनी अविचल भक्ति प्रदान की। फिर वे श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को लेकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आए। दोनों भाइयों ने आदर पूर्वक अगस्त्य जी को प्रणाम किया। उनसे आशीर्वाद और निर्देश पाकर वे पंचवटी के निकट जा पहुंचे। वहां दंडक वन में गृध्रराज जटायु से उनकी भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर श्री राम जी गोदावरी नदी के निकट पर्णकुटी बनाकर रहने लगे।

0: या ईश्वर जीव आदि के संबंध में विस्तार से समझाया। भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख का अनुभव किया और प्रभु के चरणों में सिर नवाया। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। तब एक दिन क्या हुआ,
1: सुंदर तनिक इधर तो देखिए।
2: कौन, क्या है?
1: देखिए तो तुम सम पुरुष न मौसम नारी।
2: क्या
1: हैरान न हो, ये संजोग विधि रचा बिचारी।
2: कैसा संजोग?
1: मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहुं नाही।
2: तो
1: ताते अब लगी रहूं कुमारी।
2: कुमारी?
1: हाँ मनुमाना कछु तुम्हें निहारी।
2: कुमारी उधर देखो, अहि कुमार मोर लघु भ्राता।
1: कुमार
3: सुंदरी सुनो, मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा।
1: लेकिन कुमार मैं तो आपको।
3: सुंदरी मैं तो एक छोटा सा सेवक मात्र हूँ, प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा, जो कछु करहीं उन्हीं सब छाजा।
1: किंतु तुम्हारे लिए भी तो सब कुछ संभव है कुमार।
3: नहीं सुंदरी, नीति कहती है सेवक सुख चहे मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी, लोभी जस चहे चार गुमानी, नव दुहि दूध चहत ए प्राणी। असंभव, बिल्कुल असंभव।
1: कुमार आप पढ़े हैं, आप ही मुझे।
2: नहीं सुंदरी, मेरा छोटा भाई ही उपयुक्त है।
1: कुमार तुम ही मुझे अपनाओ, ऐसा भरपूर यौवन, मोहक सुंदरता, सोलहों श्रृंगार से सजी हुई ये देह तुम्हारे ही वरण करने योग्य है कुमार।
3: निर्लज्ज तो ही सो बरई, जो त्रिन तोरी लाज परिहरई। चल दूर हो यहां से।
1: देखती हूं, अभी देखती हूं।
2: लक्ष्मण क्या देखते हो?
3: ले ले पापिष्ठे, तेरे लिए यही दंड।
1: खर और दूषण, तुम दोनों भाइयों के रहते मेरी ये दुर्दशा तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे बल और पौरुष को धिक्कार है।
4: आखिर अपनी दुर्दशा का कुछ कारण तो बताओ।
1: कारण? कारण पूछते हो? जाकर राम और लक्ष्मण नाम के उन दो कुमारों से बदला लो।
4: तो क्या?
1: हाँ हाँ, उन्हीं कुमारों के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट लिए, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। हे भाई जाओ और उन लोगों से मेरे अपमान का बदला लो।
5: योद्धाओं युद्ध का बिगुल बजाओ, जाओ और उन दोनों भाइयों को जीते जी पकड़ लो।
2: लक्ष्मण यह कोलाहल सुन रहे? आकाश में उड़ती हुई धूल से लगता है कि असुर समूह अपना आतंक दिखाने को आतुर है। वो देखो राक्षसों की भयानक सेना आ पहुंची। भाई लक्ष्मण सीता को तुम पर्वत की गुफा में ले जाओ, सावधान रहना।

0: अब लोग निज तज विकल भटति सराहि कर दूषण।
1: घन घोर संग्राम हुआ, खर और दूषण मारे गए। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर मायापति श्री राम ने ऐसा कौतुक किया कि शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम समझकर आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। उधर तो राक्षस राम राम कहीं तनु तजहीं पावहीं पद निर्माण, और इधर करी उपाय रिपु मारी छन मह कृपा निधान। फिर शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर लक्ष्मण जी सीता जी को गुफा से बाहर ले आए। यहां तो पंचवटी में श्री राम ने देवता और मुनियों को सुख दिया, वहां लंका जाकर शूर्पणखा ने रावण को भड़काया।
2: अरे लंकेश, तूने अपने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। कर सिपान सोवस दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आ राती। क्या तू इतना भी नहीं जानता कि शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सांप को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अरे दशकंधर, तेरे जीते जी मेरी ये दशा।
3: अरे पहले ये तो बता कि तेरे नाक कान किसने काट लिए।
2: हाँ बैठे बैठे क्या पूछते हो, वहाँ वन में जाकर देखो। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए।
3: तो फिर क्या हुआ?
2: तुम नहीं समझोगे, मैं तो उनके कामों को देखकर समझ गई हूँ कि वे दोनों भाई पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे।
3: अरे तू उन बालकों से डर गई?
2: देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलवध रथ सुरमुनि सुख दाता।
3: तू उनका नाम तो बता।
2: शोभा धाम राम असनामा,
3: और
2: तिनके संग नारी इक श्यामा, रूप रासी विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी।
3: तो क्या राम ने?
2: नहीं, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनी तब भगिनी करी ही परिहासा।
3: क्या तेरी पुकार किसी ने नहीं सुनी?
2: मेरी पुकार खरदूषण ने सुनी, वे अपनी विशाल सेना लेकर मेरी सहायता को आए, लेकिन दोनों भाइयों ने सारी सेना को मार डाला।
3: और खरदूषण?
2: उन राजकुमारों ने खरदूषण और त्रिशरा को भी मार डाला।
3: उन राजकुमारों का इतना साहस, क्या वे लंकाधिपति की शक्ति को नहीं जानती? शूर्पणखा जा तू विश्राम कर, दोनों कुमार अपने किए का फल भोगेंगे।
4: सारी रात मुझे करवटें बदलते बीत गई, एक क्षण को भी नींद नहीं आई, पल भर को भी पलकें नहीं लगी। आखिर यह सब कैसे हुआ? देवता मनुष्य नाग और पक्षियों में कहीं भी तो कोई ऐसा नहीं जो मेरे किसी सेवक की भी बराबरी कर सके। फिर खरदूषण कैसे मारे गए? वे भी तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है? तो क्या ये कुमार भगवान का ही अवतार हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और अगर सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाए बैर हट करूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरूं। अब इस तामस देह से भजन तो होगा नहीं, इसलिए मन वचन और कर्म से मेरा यही दृढ़ मंत्र है। और अगर वे मनुष्य के रूप में किसी राजा के पुत्र होंगे तो उन दोनों को संग्राम में जीत कर उनकी स्त्री को छीन लूंगा।
1: रावण इस प्रकार का निश्चय कर अकेला ही रथ पर चढ़कर समुद्र तट पर रहने वाले मारीच के पास चला गया। इधर श्री राम ने एक अन्य ही युक्ति रच डाली।

लक्ष्मण जी जब फल फूल कंद मूल लेने गए हुए थे तो श्री राम ने सीता जी से कहा, अब मैं कुछ मनोहर नर लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। सीता जी श्री राम के आदेशानुसार प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गईं, किंतु सीता जी ने अपने ही जैसी शील स्वभाव और रूप वाली विनम्र छाया मूर्ति वहां छोड़ दी। लक्ष्मण जी भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। इधर तो ये लीला हो रही थी, उधर रावण की मंत्रणा और भय के कारण मारीच कपट मृग का रूप धारण कर पर्णकुटी के सामने होकर निकला। रावण भी वहीं उस वन में जा छिपा था।

0: आर्य पुत्र वो देखिए, वो कितना सुंदर है वो मृग। सोने का शरीर और उस पर जड़ी हुई मणियां, कितना मनोहर है ये हरिण।
1: हाँ, है तो।
0: सुनऊ देव रघुबीर कृपाला, ए मृग कर अति सुंदर छाला। हे सत्य प्रतिज्ञ, इसे मारकर इसका सुंदर चर मुझे ला दीजिए।
1: जैसी तुम्हारी इच्छा देवी। लक्ष्मण।
2: देव, अरे आपने तो परिकर भी कस लिया, धनुष पर बाण का भी संधान कर लिया।
1: लक्ष्मण, सीता की इच्छा है कि मैं उस स्वर्ण मृग को मारकर उसका चर्म इन्हें ला दूं। मैं ऐसा ही करूंगा, किंतु भाई वन में बहुत से राक्षस घूमते रहते हैं, अतः तुम सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी।
2: जैसे प्रभु की आज्ञा।
0: लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भाई संकट में है, जाओ तुम शीघ्र ही उनकी सहायता को जाओ।
2: माता, भक्ति विलास सृष्टि लय हुई, सपने हो संकट परे की सोई।
0: ये बातें बनाने का समय नहीं है।
2: लगता है कठोर सत्य को आप समझ नहीं पा रही हैं।
0: और मुझे लगता है कि कायरता ने तुम्हारी बुद्धि और बल को हर लिया है। तुम जाते हो कि नहीं?
2: आपकी आज्ञा से मैं चला तो जाता हूँ, परंतु।
0: परंतु क्या?
2: कुछ नहीं, ये रेखा खींच रहा हूं, इसका उल्लंघन करने पर आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, स्मरण रखना।
3: नारायण नारायण नारायण।
1: देव,
0: यतिवर,
1: कथा कहानी सुनने में रुचि रखती हो?
0: आपकी कृपा है यतिवर।
1: राजनीति का उपदेश कैसा रहेगा राजकुमारी?
0: आपकी कृपा से वो तो मैं सुनती ही रही हूँ।
1: तब क्या प्रेमालाप?
0: गुसाई जी, आप साधु का वेश धारण किए हैं और इस प्रकार कामी पुरुषों की जैसी चेष्टाएं कर रहे हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता।
1: मुझे उपदेश करती है? मेरे नाम और शक्ति शायद तू परिचित नहीं
0: है। यतिवर, इस प्रकार दुष्टों की जैसी चेष्टाएं करके आप मुझे भयभीत करना चाहते हैं? मुझे तो आपके साधु होने में ही संदेह है, आखिर आप हैं कौन?
1: ले देख मेरा असली रूप। तेरे सामने लंकाधिपति रावण खड़ा है, तेरी अनंत रूप राशि का भिखारी।
0: अरे अरे दुष्ट, तेरा इतना साहस, खड़ा तो रहे, वो देख स्वामी आ गया।
1: कहां है तेरे स्वामी? आ, इस रथ पर बैठ और मेरे साथ चल।

0: बच्चा को फूल कमल दिवाकर तुम कहो किस अपराध से मुझे भुला बैठे। देखो देखो ये पापी मुझे बलपूर्वक लिए जा रहा है। देखो लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोसा सो फल उपायो के नेवरोसा। स्वामी स्वामी की कृपा तो मुझ पर बहुत है पर वो स्नेह प्रभु सब में दूर है। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन बताए।
1: सीते, सीते पुत्री करे से जनित्राता, करिहे उजात धान करनाता, रे रे दुष्ट ठाड़ किने होई, मेरे भय चले सी, न जाने ही मोही।
2: की मैं नाग की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। ये तो बूढ़ा जटायु है, ये अवश्य ही आज मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपने शरीर का परित्याग करेगा।
1: रावण मेरी बात सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो राम रोष पावक अति घोरा हो ही सकल सलब कुल तोरा।
2: अरे बूढ़े जटायु, खैर
3: शायद तेरा काल ही तुझे यहां खींच लाया है।

0: गृध्रराज जटायु को घायल कर रावण सीता जी को ले चला। विलाप करती हुई सीता जी आकाश मार्ग से जाते हुए पर्वत पर बैठे हुए वानरों को देखकर राम जी का नाम लेकर वस्त्रालंकार आदि फेंकती चली गई। रावण ने सीता जी को ले जाकर अशोक वन में रखा। इधर लक्ष्मण जी से सीता जी के संबंध में समाचार पाकर श्री राम जी बहुत दुखी हुए। पर्णकुटी को सीता जी से रहित देखकर वे बहुविध विलाप करने लगे।
1: हा गुलफानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता, तुम कहाँ हो प्राण वल्लभे, तुम कहाँ हो? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी?
2: तात, विषाद का परित्याग कीजिए, आपके समान धीर पुरुष संसार में दूसरा नहीं है।
1: सुनो जानकी, तो ही बिन आजू हर से सकल पाई जन राजू।
2: तात, देखिए सारा वन प्रदेश पार कर हम कहां आ पहुंचे।
1: राम राम राम।
2: तात
1: राम,
2: इधर देखिए कोई पंख कटा विशाल पक्षी दम तोड़ रहा है।
1: राम, अरे

0: अरे ये तो गिरधिराज जटायु है। तात, तुम्हारी ये दशा, तुम्हारी इस दुर्गति का कारण कौन है?
1: नाथ, दशा नन ये गति कीनी, तहीं खल जनक सुता हर लीनी।
0: तात, जानकी किधर है, किधर गया है दशानन?
1: ले दक्षिण दिशि गयउ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई।
0: उन्हीं के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है तात।
1: दरस लागे प्रभु राखे प्राण, चलन चहत अब कृपा निधाना।
0: तात, आप अपने देह की रक्षा कीजिए।
1: नाथ, मरते समय जिनका नाम मुख पर आ जाने से पापी भी मुक्त हो जाता है। सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के खा गए।
0: तात, आपने अपने शुभ कर्मों से ही सदगति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजी तात जाहु मम धामा, देउ काह तुम पूरन कामा।
1: नाथ, ये सब आपकी कृपा है।
0: मेरी एक प्रार्थना है। सीता हरन तात जनि कहु पिता सन जाई, जौ मैं राम त कुल सहित कह ही दसानन आई।
2: राम के इतना कहते ही गीध देह तजी धरी हरि रूपा, भूखन बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। अबिरल भगति मांगि पर गीध गयउ हरि धाम, तेह की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। इसके पश्चात दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए और वन की सघनता देखते हुए आगे चले। मार्ग में उन्होंने कबंध का वध किया, उसे गति देकर श्री राम जी भाई सहित शबरी के आश्रम में पधारे। दोनों भाइयों को देखकर शबरी उनके चरणों से लिपट गई, प्रेम मगन मुख वचन ना आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे।
3: प्रभु, मेरा अहोभाग्य आप इस दीन की कुटिया में पधारे। कंदमूल के सिवा इस दीन के पास और है ही क्या, कृपा कर आप यही ग्रहण कीजिए। प्रभु,
0: देवी यह तो बहुत ही स्वादिष्ट फल है। इनके माधुरी के सामने षटरस व्यंजन भी व्यर्थ है।
3: प्रभु, कही विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती आभारी। मैं तो बहुत ही पापनी और मंद बुद्धि हूं। प्रभु,
0: देव मेरी बात सुनिए, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन कुन चतुराई, भगति हीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारित देखी अजैसा। और मैं देख रहा हूं कि शास्त्रों में बताई गई जो नौ प्रकार की भक्ति है वह सब तुम में दृढ़ रूप में विद्यमान है। इसलिए योगियों को भी जो गति दुर्लभ है वही आज तुम्हें सुलभ हो गई।
3: ये सब आपकी कृपा है प्रभु।
0: देव, अब अगर तुम्हें जानकी का कुछ भी पता हो तो कृपा कर हमें बता दो।
3: पंपा सरही जाओ रघुराई,

0: तहां होई ही सुग्रीव मिटाई। सो सब कहे ही देव रघुबीरा, जानत हो पूछो मत धीरा।
1: इस प्रकार शबरी ने नमस्कार प्रभुपद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। श्री राम जी को सारी कथा सुनाकर हृदय में उनके चरण कमलों का ध्यान करके वो योगाग्नि में देह त्याग कर दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई। तदनंतर अनेक कथा संवाद कहते श्री राम जी और लक्ष्मण जी वन की छटा निरखते पंपासर जा पहुंचे। वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। तभी नारद मुनि ने सीता हरण की घटना से व्यथित सीता जी के वियोग में व्याकुल श्री राम जी के दर्शन किए।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।